मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 5:58:50 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।

0: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन।

जहां विचारों का सम्मान ना हो और सत्य अप्रिय लगे वहां मौन साध लो।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन। आलेख प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव का है। वाचक है दिनेश नामदेव।
1: माता पिता और गुरु हमारे जीवित भाग्य विधाता होते हैं, जो हर पल हमारे हित की ही बातें सोचते और करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने माता पिता पिछड़े और रूढ़िवादी लगने लगते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर हमें टोकते हैं, वक्त बेवक्त सलाह देते हैं। हम इस बात पर भी गर्व करते हैं कि हम अब बड़े समझदार और ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, इसलिए हमें अब माता पिता की सलाह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब हमें अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। स्थिति ये बनती है कि बात बात पर वृद्ध माता पिता की उपेक्षा होने लगती है। वे एकाकीपन महसूस करते हैं और बीते समय को याद करके दुखी होते हैं। समय की दौड़ में जब माता पिता के कदम शिथिल हो जाते हैं तो आवश्यकता इस बात की होती है कि बच्चे और युवा अपने बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ उठाएं और उनके मान सम्मान के प्रति सजग रहें। माता पिता के आंसू बालकों का दुर्भाग्य लाते हैं। व्यर्थ के आडंबरों में पड़कर धन समय और श्रम बर्बाद करने से अच्छा है कि माता पिता की आज्ञा को मानकर उनके अवकाशकालीन समय को सुखमय बनाया जाए।

0: जिससे वे अपने जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए जी सकें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की माँ ने अपने गहने बेचकर उन्हें पढ़ाया लिखाया था। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी पढ़ लिख कर बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अब आपके लिए सोने के गहने बनवा देता हूँ। माँ ने कहा, ईश्वर, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, सोने के गहने पहनकर क्या करूँगी? यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए विद्यालयों और आश्रमों की स्थापना करो। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने अपनी माता की आज्ञाओं का पालन किया। कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर आज का युवा वर्ग इस बात को नहीं मानता। माँ के रूप में ईश्वर हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। ये माँ और संतान के बीच का दृढ़ बंधन ही है जो माँ अपनी संतान की परेशानी को बिना कहे ही भांप लेती है और कुछ इस तरह निदान करती है कि संतान आश्चर्यचकित रह जाती है। पिता का व्यक्तित्व गंभीर और स्नेहपूर्ण होता है, जो अपनी संतान को धीरे धीरे ये सिखाता है कि विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है। माता पिता का महत्व हमें तब समझ में आता है जब वे हमसे दूर हो जाते हैं। जीवन परिवर्तनशील है, कब क्या हो जाए पता नहीं, एक पल में दुनिया उलट जाती है। अपने माता पिता से प्रेम करना, उनकी आज्ञा को मानना हमें न सिर्फ संस्कारी बनाता है बल्कि सुखी परिवार की नींव भी रखता है, जो आज के समय की मांग है। जिन माता पिता ने हमें जीवन दिया, निस्वार्थ पालन पोषण किया, हमारा जीवन संवारने में बरसों बरस लगा दिए, जब लौटाने की बारी आई तो ये कहाँ तक उचित है कि हम अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाएं? जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तभी अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं और अपने बच्चों के सामने भी गलत छवि बनाते हैं कि वे परिवार के वृद्धजनों के साथ साथ समाज के बुजुर्गों के प्रति हेय दृष्टि रखें और अपना जीवन अपने तरीके से जीने की जिद में जीवन की गाड़ी गलत रास्ते पर डाल दें और फिर सिर्फ पछतावे के उनके हाथ में कुछ भी ना लगे और वे अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी अवांछित हो जाएं। अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हमें अपने परिवार और समाज को खुशहाल बनाना है तो अति आवश्यक है कि हम अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें, गुरुजनों का सम्मान करें, सहायता करें और आवश्यकता पड़ने पर उनकी तन मन धन से सेवा करें, ताकि हम और हमारी संतानें परिवार, समाज तथा राष्ट्र का उपयोगी अंग बनकर अपना जीवन संवारें, साथ ही सदैव सुख और संतोष के साथ जीवन बिताएं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव का था, वाचक थे दिनेश नामदेव। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर सुरेश वाडकर का है।

भारद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की। उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि

उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्री राम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर सुरेश वाडकर का था। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी। इसमें आज किसान भाई सुने खरीफ फसलों के बीजोपचार के बारे में जानकारी।
1: किसान भाई बहनों, हमारी खेती में बीज का बहुत अधिक महत्व है। बीजों का उपचार अवश्य करें। प्रमाणित साफ और स्वस्थ बीजों को भी फफूंद रोगों और दीमक से सुरक्षित रखने के लिए फफूंदनाशक और कीटनाशक दवा से बीजोपचार करना जरूरी होता है। कुछ बहुत ही भयंकर बीमारियां ऐसी हैं जो केवल बीजोपचार के द्वारा ही रोकी जा सकती है और इनका इलाज बाद में नहीं किया जा सकता, जैसे कि धान में पौध गलन, आभासी कंडुआ, जड़ गलन, जीवाणु पत्ता अंगमारी, पद गलन और फसलों में

0: दीमक, सफेद लट और बीमारियां पौधों को बिजाई के तुरंत बाद ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसके कारण पैदावार कम हो जाती है। इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि उपचारित करके बीजों को बोएं। अब एक एक करके हम अलग अलग फसल ले रहे हैं। धान की फसल ले लें सबसे पहले। स्वस्थ बीज का चुनाव करें। इसके लिए 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम साधारण नमक डालकर अच्छी तरह से घोल लें। इसके बाद 2 से 3 किलो बीज बारी बारी से इस नमक के पानी में डालें और फिर हिलाएं। ऊपर तैरते हुए जो बीज हैं वो अस्वस्थ होते हैं, तो इन हल्के बीजों को अलग करके नष्ट कर दें, क्योंकि इसमें बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह सारा बीज नमक के घोल में डालकर निकालें और उसके बाद नीचे बैठे हुए भारी बीज को चलते या बहते पानी में 2 से 3 बार धो लें, ताकि बीजों पर जो नमक चिपका है वो बह जाए या धुल जाए और उससे हमारे बीजों के अंकुरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके बाद 10 लीटर पानी में थायोमेथोक्सम दवा, इमिडाक्लोरपिड दवा और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा, इनको घोल लें और घोल में 10 से 12 किलो बीज 24 घंटे तक भिगोकर बीज को उपचारित करें। बीज को निकालकर छाया में सुखाकर उसके बाद ही बिजाई करें। इसी प्रकार बाजरे के लिए 10% नमक का घोल ले लें और जिस तरह से हमने धान में बताया था उसी प्रकार बीज को डालकर 10 मिनट तक चलाएं और ऊपर तैरते हुए अर्गट पिंडों को निकालकर अलग कर दें। बाद में इन हल्के बीजों को जलाकर नष्ट कर दें। घोल में जो नीचे बैठे हुए भारी स्वस्थ बीज हैं उनको बाहर निकाल लें और एक पानी से अच्छी तरह से धो लें, जिससे कि बीज की सतह पर जो नमक का कोई अंश है तो वो हट जाए। यदि नमक का कोई अंश बीज की सतह पर किसी कारणवश रह जाता है तो उससे बीज के अंकुरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए धुले हुए सारे बीज को छाया में सुखाकर फिर उपचार करें। उपचार के लिए बोने के पहले 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 1 मिलीलीटर पेनफ्लुफेन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार करें। बीज की सिफारिश की गई मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें ये मात्रा हमने आपको बाजरे के लिए बताई है। अब जो किसान बहन भाई मक्का बो रहे हैं उनके लिए देसी मक्का के लिए 6 किलोग्राम बीज लगेगा और साठी मक्का के लिए 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। भूमि और बीज में लगने वाली बीमारियों से बचाव के लिए 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, इससे सूखा ही बीज उपचारित कर लें। तिल के लिए भी 2 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है, इसमें 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर इसको उपचारित कर लें। मूंग, उड़द, अरहर, लोबिया और सोयाबीन, इन फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर के अलग अलग टीके आते हैं। ये टीके अलग अलग पैकेट में आते हैं। एक पैकेट 1 एकड़ के बीजों के लिए पर्याप्त होता है। एक खाली बाल्टी में 2 कप 200 मिलीलीटर पानी ले लें। इसमें 50 ग्राम गुड़ घोल लीजिए। 1 एकड़ के इस बीज पर गुड़ का घोल डालें और ऊपर से राइजोबियम का टीका छिड़क दें। बीजों को हाथ से अच्छी तरह से मिला लें और बिजाई से पहले बीज को छाया में सुखा लें। अब ये टीके तरल अवस्था में भी उपलब्ध हैं, उनको भी बीज पर छिड़क कर हाथ से अच्छी तरह से मिलाकर बिजाई आप कर सकते हैं। जड़ गलन की रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्वार के बीजोपचार के लिए 6 लीटर पानी में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल लें और इस घोल में 5 से 6 किलोग्राम ग्वार बीज आधा घंटे तक भिगो कर रखें। बीज को इस घोल से निकालकर छाया में सुखा लें। इसके बाद बीज को राइजोबियम का टीका और फॉस्फेटिका कल्चर से 1 एकड़ बीज के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से कल्चर के साथ दी गई विधि के अनुसार उपचारित करके छाया में सुखाकर फिर बुआई करें। बीज का उपचार करते समय पहले बीज को कीटनाशक से उपचारित करें, उसके बाद फफूंदनाशक से उपचारित करें और अंत में जाकर फिर आप जीवाणु खाद लगाकर, जो कि हम राइजोबियम या फॉस्फेटिका बता रहे थे, फिर उपचारित करें। दवाई या पानी की बताई गई मात्रा उतनी ही प्रयोग करें जितना बताया गया है।
1: कृषि सामयिकी में अभी किसान भाई सुन रहे थे खरीफ फसलों का बीजोपचार, इस बारे में जानकारी मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर और सुबह 9 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम होगा लोक रस्तार। कलाकार होंगे शिवचरण पटेल।

और अर्जुन सिंह धुर्वे। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। वंदे मातरम गौरवगान की 150वीं, यह कार्यक्रम 10:05 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा 10:20 पर। 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे न्यूज हेडलाइन से। 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। फिल्म संगीत 5:33 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा उमंग, समय होगा शाम 6 बजे। 6:30 पर लोक संगीत में सुनिएगा लखनलाल रजक के गए बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत 6:45 पर कलाकार होंगी दीप्ति रॉय। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम शाम 7:21 पर। इसमें आज आपको सुनवाएंगे डॉक्टर PL अम्बुलकर से ली गई भेंटवार्ता, भिंडी की फसल को कीटों से बचाएं, इस विषय पर जानकारी। सुर्खियों में रात 8 बजे भोपाल केंद्र से। 8:15 पर फिल्म संगीत। स्पॉटलाइट रात 9:15 पर। 9:30 पर फोन इन कार्यक्रम होगा। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम

0: काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः योमिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्ना अस्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पादसमूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
2: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
6: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा

0: है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुच्चेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management and culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the US have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. He said that the US team is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. Five newly appointed Supreme Court judges will take oath today. Chief Justice of India, Surya Kant, will administer the oath of office to the judges. President Draupadi Murmu, after consultation with the Chief Justice of India, has appointed five new judges to the Supreme Court. According to a notification issued by the Law Ministry, Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Justice Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Justice Sri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Justice Sanjeev Sajdeva, and Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, Justice Arun Balli, have been elevated as Supreme Court judges. Senior advocate Venkita Subramani Mohana has also been appointed as a judge in the Apex Court. BJP National President Nitin Nabin held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancements taking place across every sector. Uttar Pradesh government has constituted two separate high-level inquiry committees to investigate the collapse of the segmental span of the under-construction bridge over the Betwa River in Hamirpur district. The committees under the district administration and Uttar Pradesh Bridge Corporation have begun a comprehensive investigation into the incident, which took six lives. District Magistrate Hamirpur Abhishek Goyal said that the three-member inquiry committee constituted by the district administration, headed by the additional district magistrate Namami Gange, is conducting a detailed examination of all administrative, technical and procedural aspects related to the incident. In Uttarakhand, UNESCO World Heritage Site Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been opened to tourists. The Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. According to the department, Valley of Flowers is currently home to more than 300 species of flowers and several rare varieties of flora. Forest Range Officer Chetna Kandpal said that the valley will remain open to visitors until the 31st of October. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Takamigahara, Japan yesterday. Captain Ketan Kushwaha led from the front with a brace, scoring in the 3rd and 36th minutes. Varinder Singh added another goal in the 5th minute, while Shahrukh Ali sealed the win with a powerful strike in the 54th minute. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति

0: बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों से शुरू किए गए जल संरक्षण के अच्छे कार्यों की बदौलत संभव हुआ है। भारत भवन के बहिरंग में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कल कहा कि प्रदेश केन, बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा।
1: कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आंकड़ा भी जुटाया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। राज्यपाल ने कल अपने जन्मदिन पर लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकालें, संतुलित आहार, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। राज्यपाल श्री पटेल के जन्मदिवस पर लोकभवन के सांदीपनि सभागार में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने वहां उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता किट भी प्रदान की और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बच्चों से संवाद भी किया। चुनाव आयोग ने प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी। इसके साथ ही चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 30 जून को मतदान होना सुनिश्चित है। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा 22 मई को कर दी थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में PM ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र के तहत इंदौर संभाग के समस्त जिले तथा इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब पूरे इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 3 श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई महीने में शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब रुख करते हैं मौसम का। नौतपा का आज 9वां और आखिरी दिन है। हालांकि उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल, इंदौर, देवास और सीहोर समेत प्रदेश के 46 जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र ने आज भोपाल के साथ ही झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं खंडवा कलेक्टर ने बारिश में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों को अग्रिम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेल 2026 से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। वहीं जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। पूल की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एक खदान का पट्टा निरस्त कर दिया है जबकि दो खदानों पर जुर्माना लगाया है। झाबुआ जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले के सभी पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। गुना कलेक्टर ने कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कल विकासखंड बजाक के गांव चाड़ा सिलपड़ी पहुंचकर मिलेट्स अम्बेसडर लहरीबाई के 150 बीज भंडार केंद्र का अवलोकन किया। छतरपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 30 दिन तक चले इस महाअभियान में संबंधित डेटा को डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए दमोह पन्ना के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने कल एक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत में आज पहले बात करते हैं भारतीय खिलौने की।

भारतीय खिलौने कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का अनूठा प्रतीक है। खिलौने किसी भी देश के बचपन का आईना होते हैं। भारत में खिलौनों का इतिहास केवल मनोरंजन

सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले मिट्टी के पहिए, बैलगाड़ियाँ और सीटी बजाते पक्षी इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि भारत में खिलौना निर्माण की परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। भारतीय खिलौने मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और संस्कारों की पहली पाठशाला रहे हैं। भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता यहाँ के खिलौनों में साफ झलकती है। देश के अलग अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक के चन्नापटना खिलौने अपनी खास लकड़ी और प्राकृतिक जैविक रंगों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली और एटिकोपक्का खिलौने हल्की लकड़ी और लाख से बनाए जाते हैं, जो पूरी तरह से विष रहित और बच्चों के लिए सुरक्षित होते हैं। तमिलनाडु की प्रसिद्ध तंजावुर गुड़िया मिट्टी और कागज़ की लुगदी से बनती है। विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित ये गुड़िया हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो प्राचीन भारतीय कारीगरों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और पश्चिम बंगाल के टेराकोटा मिट्टी के खिलौने भारतीय लोक जीवन और पौराणिक गाथाओं को जीवंत करते हैं। पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल जैसे पचीसी, चौसर, लट्टू, गिट्टे और कठपुतली बच्चों के समग्र विकास में सहायक हैं। जहां आज के डिजिटल और प्लास्टिक के खिलौने बच्चों को एकाकी बनाते हैं, वहीं भारतीय पारंपरिक खेल बच्चों में सामाजिक भावना, एकाग्रता और रणनीतिक सोच का विकास करते हैं। ये खिलौने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के पात्रों से जोड़कर अनजाने में ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे देते हैं। साथ ही लकड़ी और मिट्टी के होने के कारण ये स्पर्श की संवेदनशीलता और शारीरिक समन्वय को भी मजबूत करते हैं। आज का भारतीय खिलौना उद्योग एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने इस क्षेत्र में नई जान फूंक दी है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज लागू की गई है। कड़े सुरक्षा मानकों के कारण घरेलू बाजार में घटिया और हानिकारक प्लास्टिक वाले विदेशी खिलौनों का आयात तेजी से घटा है। भारतीय कारीगर अब पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक के साथ मिला रहे हैं, जिससे भारतीय खिलौनों का वैश्विक निर्यात कई गुना बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा और अन्य क्षेत्रों में खिलौना क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण और स्क्रीन टाइम के इस दौर में भारतीय पारंपरिक खिलौने अपनी पर्यावरण अनुकूल प्रकृति के कारण सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। भारतीय खिलौनों को अपनाना न केवल पर्यावरण और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के हित में है, बल्कि ये देश के लाखों पारंपरिक शिल्पकारों की आजीविका को बचाने का भी एक सशक्त माध्यम है। बदलते समय के साथ भारतीय खिलौने अब वैश्विक पटल पर भारत की सॉफ्ट पावर बनकर उभर रहे हैं। भारतीय खिलौनों का इतिहास केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन कला और वैज्ञानिक सोच का एक जीता जागता दस्तावेज है। भारत के हर राज्य की एक अनोखी खिलौना कला है, जो स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सामग्री और संस्कृति को दर्शाती है। श्रोताओं, ये थी खिलौना उद्योग के बारे में जानकारी।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी बचपन, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं काव्य रस के तहत श्री राजा चौरसिया का काव्य पाठ।
6: मेरी रचना का शीर्षक है, जबरन हंसने के दिन आए, ये युग बड़ा अनोखा आया, ये युग बड़ा अनोखा आया, खुशी नहीं पर खुशी दिखाए, कितने प्यारे कितने अच्छे, कितने प्यारे कितने अच्छे, जबरन हंसने के दिन आए। केवल ऊपर अपनापन है, केवल ऊपर अपनापन है, शब्दों का ही आज चलन है, भीतर भरी भड़ास है लेकिन, भीतर भरी भड़ास है लेकिन, बिन मन के हो रहा नमन है, ये अलबेली नवेली दुनिया, ये अलबेली नवेली दुनिया, प्यार नहीं पर प्यार जताए, जबरन हंसने के दिन आए। नहीं हृदय का अता पता है और नहीं सद्भाव बचा है, नहीं हृदय का अता पता है और नहीं सद्भाव बचा है, मुखड़े पर नित नए मुखौटे, जहां दिखावा वहां मजा है, असली पर हावी है नकली, असली पर हावी है नकली, झूठ सांच का गला दबाए, जबरन हंसने के दिन आए। बहु रूपिया हो गए हैं हम, बहु रूपिया हो गए हैं हम, बैरी में शुभ चिंतक का भ्रम, पर्दे के पीछे तनाव है, पर्दे के पीछे तनाव है, बाहर सरगम अंदर है गम, जो बर्दाश्त नहीं उससे भी, जो बर्दाश्त नहीं उससे भी, हाथ मिलाकर हम मुस्काए, जबरन हंसने के दिन आए। हंसते हंसते जो हैं डसते, हंसते हंसते जो हैं डसते, हाय हलो तक सीमित रिश्ते, मेकअप जैसी हंसी हो गई, मेकअप जैसी हंसी हो गई, रंग गंध पर ताने कसते, शूल है मन में लेकिन हमने, शूल है मन में लेकिन हमने, स्वागत में है फूल बिछाए, जबरन हंसने के दिन आए। दूसरी रचना, क्या कहना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे क्या कहना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे क्या कहना, सांप भी दिखने लगे सपेरे क्या कहना, जब तक उनकी दाल नहीं गल पाती है, जब तक उनकी दाल नहीं गल पाती है, शुभ चिंतक रहते हैं घेरे क्या कहना, जो अनार हैं वो खुद ही बीमार हुए, जो अनार हैं वो खुद ही बीमार हुए, मौके पर घर भी मुंह फेरे क्या कहना, मौके पर घर भी मुंह फेरे क्या कहना, उजियारे चेहरे पर रहते हैं लेकिन, उजियारे चेहरे पर रहते हैं लेकिन, दिल में रहते कई अंधेरे क्या कहना, विष भी अमृत का भ्रम पैदा करता है, विष भी अमृत का भ्रम पैदा करता है, विश्वासों के उजड़े डेरे क्या कहना, कोयल की अब कूक हूक सी लगती है, कोयल की अब कूक हूक सी लगती है, कौवे दिखते नहीं सवेरे क्या कहना, ऊपर ऊपर हंसी बसी रहती है पर, ऊपर ऊपर हंसी बसी रहती है पर, अंदर तो है दर्द घनेरे क्या कहना। भाव रात दिन पानी भरते रहते हैं, भाव रात दिन पानी भरते रहते हैं, शब्द ठाठ से करें बसेरे क्या कहना। सत्यमेव जयते कहते रहते लेकिन, सत्यमेव जयते कहते रहते लेकिन, झूठ बोलते हैं बहुत तेरे क्या कहना। करनी हंसी उड़ाती रहती कथनी की, करनी हंसी उड़ाती रहती कथनी की, हाल ये मेरे हाल ये तेरे क्या कहना। अगली रचना है अंत में, प्यार न रहता प्यार अंत में, प्यार न रहता प्यार अंत में, सब कुछ है बेकार अंत में। माया काया है बस छाया, माया काया है बस छाया, कहता है संसार अंत में। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, यही निकलता सार अंत में, सब कुछ है बेकार अंत में। चार दिनों की हुए चांदनी, चार दिनों की हुए चांदनी, नाते रिश्तेदार अंत में, सब कुछ है बेकार अंत में। अपने भी सपने हो जाते, अपने भी सपने हो जाते, बड़ी करारी मार अंत में, जिनको थे दमदार समझते, जिनको थे दमदार समझते, वे निकले दमदार अंत में, सब कुछ है बेकार अंत में। लाचारी क्या है वो जाने, लाचारी क्या है वो जाने, जो होता लाचार अंत में। रहते हुए सभी उजियारे, रहते हुए सभी उजियारे, छा जाता अंधियार अंत में, बातों और घातों के द्वारा, बातों और घातों के द्वारा, वार करे परिवार अंत में, सब कुछ है बेकार अंत में। अहम और

0: और भ्रम के कारण ही, अहम और भ्रम के कारण ही है अनार बीमार अंत में। और जिसको हम सब कुछ समझे वो, जिसको हम सब कुछ समझे वो, पैसा हुआ लवार अंत में। अगली रचना शीर्षक है देख तो, बढ़ रहा बहुरूप यापन देख तो, बढ़ रहा बहुरूप यापन देख तो, सगापन भी है दगापन देख तो। झूठ करता मौज मस्ती मजा पर, झूठ करता मौज मस्ती मजा पर, सत्य करता शीर्षासन देख तो। लाज पर तो आज गिरती गाज है, लाज पर तो आज गिरती गाज है, संस्कारों का समापन देख तो। पूछता है कौन दिल को अब यहाँ, पूछता है कौन दिल को अब यहाँ, रूप है कितना टनाटन देख तो। उल्टी गंगा बह रही है आजकल, उल्टी गंगा बह रही है आजकल, साध की छाती पर साधन देख तो। अपने सपने हो गए हैं फिर भी हम, अपने सपने हो गए हैं फिर भी हम, जिंदगी कर रहे यापन देख तो। तोड़ती दम गंध हंसते रंग हैं, तोड़ती दम गंध हंसते रंग हैं, खूबसूरत ये नयापन देख तो। अगली रचना है आजकल, आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, अवसर की चल रही हवाएं। जो करता विश्वास किसी पर, जो करता विश्वास किसी पर, वो तो फिर रोता है जी भर। जो करता विश्वास किसी पर, वो तो फिर रोता है जी भर, स्वार्थ लाग करें सब चाहत, यही व्याप्त है बाहर भीतर। पांव दबाना जिन्हें चाहिए, पांव दबाना जिन्हें चाहिए, वे भी तो अब गला दबाएं, अवसर की चल रही हवाएं। पारदर्शिता और सहजता, पारदर्शिता और सहजता, इन्हें आज हर कोई तजता, और हाथ के मैल को मानो ईश्वर से भी बड़ा समझता। जब सिद्धांत दुखांत हो गए, जब सिद्धांत दुखांत हो गए, अपनी बीती किसे सुनाएं, अवसर की चल रही हवाएं। नीति है गोरी रीति है काली, तिकड़म फूलने फलने वाली, नीति है गोरी रीति है काली, तिकड़म फूलने फलने वाली, स्वाहा करती नैतिकता को ये दुनिया भौतिकता वाली। झूठ को झंडा सच को डंडा, झूठ को झंडा सच को डंडा, दांत पेट के गिने न जाएं, अवसर की चल रही हवाएं, अवसर की चल रही हवाएं।
1: काव्य रस में अभी आप सुन रहे थे श्री राजा चौरसिया का काव्य पाठ। अब सुनिए ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म है इज्जत, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान।

0: सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: बॉक्स बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की

0: प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
6: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह

0: और शाहरुख अली ने एक एक गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन ऑंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म संगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज में फिल्म मौन का ये गीत। संगीत एमएम करीम का है।

0: तुम्हारा
1: वो चुमा
0: प्यारा प्यारा
2: लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत। गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद, फिल्म का नाम है बनारसी बाबू।

श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना सोनू निगम की आवाज़ में। गीतकार थे, गीत रानी मलिक का था, संगीत आनंद मिलिंद सागर का।

मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8:58 होने वाले हैं। न्यूज़ हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से हम रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अमेरिकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश भर में अग्रणी है। उन्होंने कल भोपाल में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह में कहा कि प्रदेश केन बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। प्रदेश में पीएम ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 3 श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई माह में शुरू करने का प्रस्ताव है। और जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। अब भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। पूल की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरांजनी सभागार में आयोजित
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। कलाकार हैं शिवचरण पटेल। आइए सुनते हैं इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे शिवचरण पटेल के गाए बुंदेली लोकगीत। अब सुनिए अर्जुन सिंह धुर्वे का गाया ये आदिवासी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में आज आपने शिवचरण पटेल और अर्जुन सिंह धुर्वे के गाए लोकगीत सुने। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मियां की मला। आपके साथ तबले पर संगत की है साबिर खान है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मियां की मल्हार। आपके साथ तबला संगत की थी साबिर खान है। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले कर रहे हैं।

0: कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक खटियार का। जबलपुर जिले में नौतपा की शुरुआत में जहां भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाया था और तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वहीं अब इसके जाते जाते तेवर कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है। तेज गर्मी का असर पहले की तुलना में कम महसूस किया जा रहा है। आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता कम हो रही है, जबकि रात में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है। दोपहर में हल्की गर्माहट और सुबह शाम सुहावना मौसम रह सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बीते दिनों जबलपुर के भंवरताल उद्यान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवाओं, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय और हितकारिणी डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके समापन पर सभी ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से दूर रहने और जन जागरूकता प्रसार करने का संकल्प लिया। जबलपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी के निर्देशों पर कोटपा अधिनियम के तहत बस स्टैंड, अस्पताल, शासकीय कार्यालय, स्कूल कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बीते दिनों जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश भी शामिल हुए। जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा करने वाला कुंडम जबलपुर जिले का पहला विकासखंड बन गया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक समन्वय और टीम वर्क के बल पर कुंडम ने ये उपलब्धि हासिल की। विकासखंड की 68 ग्राम पंचायतों के 199 गांवों में फैली 251 EBC का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। अभियान में 187 प्रगणक और 31 पर्यवेक्षक तैनात रहे, जबकि आपात स्थिति के लिए 19 प्रगणक और 3 पर्यवेक्षक रिजर्व रखे गए थे। इससे पहले जबलपुर नगर निगम ने भी हाउस लिस्टिंग का कार्य निर्धारित समय से पूरा कर लिया। जबलपुर जिले में इस वर्ष 34,660 किसानों से 25,89,031 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में अब तक 553 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा

0: चुका है, जबकि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। 28 मई तक चले उपार्जन अभियान में 36,948 किसानों ने स्लॉट बुक कराए थे। खरीदे गए कुल गेहूं में से 99.6% का परिवहन भी हो चुका है। जबलपुर के नर्मदा तटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने गौरी घाट, तिलवारा घाट सहित विभिन्न घाटों से चिन्हित 367 भिक्षुकों में से लगभग 85% का पुनर्वास कर दिया है। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में स्थानीय भिक्षुकों को समझाइश देकर घर भेजा गया, जबकि दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंदों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया। सक्षम लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं गौरी घाट पर नगर निगम ने 3R के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग सेंटर विकसित किया है, जिसके तहत यहां पर खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक, बर्तन बैंक और थैला बैंक की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत करीब 20,000 सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले माह में 42 मिलियन टन माल लदान कर 341.90 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने बीते दिनों बताया कि मंडल ने भोपाल और कोटा मंडल को पीछे छोड़कर पश्चिम मध्य रेलवे में सर्वाधिक वाणिज्यिक आय अर्जित की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा 15 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और जल आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में गौरीघाट स्थित नर्मदा तट पर 4 दिवसीय संभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों के 51 जवान शामिल हुए। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की 1.5 सदी।

श्रोताओं, किसी भी जीवंत राष्ट्र की आत्मा उसके सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रीय उद्घोषों में वास करती है। भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक ऐसा ही महामंत्र है, वंदे मातरम। नवंबर 1875 में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी में उससे प्रस्फुटित हुए इस गौरवगान ने अपनी यात्रा के 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि पराधीनता के घोर अंधकार में सोई हुई भारतीय चेतना को जगाने वाली एक दिव्य गर्जना थी, जो आज 150 सदी बाद भी उतनी ही प्रासंगिक और ऊर्जावान है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को बंगाल के कांतलपाड़ा में संस्कृत और बांग्ला के अनूठे मेल से इस गीत की रचना की थी। ये गीत जनमानस तक तब पहुंचा जब इसे उनके ऐतिहासिक और राजनीतिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। 1896, संगीत के बिना शब्द अधूरे होते हैं। राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को सुरों में पिरोया और 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसका सार्वजनिक गान किया। सन 1905 का बंग भंग आंदोलन भारतीय इतिहास का वो मोड़ था जहां वंदे मातरम महज गीत से बदलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। साम्राज्यवाद पर प्रहार। अंग्रेज हुकूमत इस नारे से इतनी भयभीत थी कि उसने सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम कहने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अरविंद घोष ने इसे अमर राष्ट्रीयता का मंत्र कहा। खुद हीराम बोस, भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारियों ने लाठियां खाते समय और फांसी के फंदे को चूमते समय इसी मंत्र का उद्घोष किया था। ये नारा देशभक्ति की अग्नि परीक्षा का पर्याय बन गया था। इस गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये किसी राजा या शासक की स्तुति नहीं है, बल्कि ये हमारी मातृभूमि की वंदना है। सुजलाम सुफलाम मलय जशी तलाम कहकर बंकिम चंद्र जी ने भारत की नदियों, उपजाऊ भूमि और चंदन जैसी शीतल हवाओं का महिमा मंडन किया। उन्होंने अमूर्त भारत माता को एक जीती जागती ममतामयी और शक्तिशाली माँ के रूप में स्थापित किया, जिसने कोटि कोटि देशवासियों को एक सूत्र में बांध दिया। आज जब हम इस गौरव गाने की 150 सदी का उत्सव मना रहे हैं, तो यह आत्मनिरीक्षण का क्षण है। आज देश के सामने भले ही विदेशी हुकूमत की बेड़ियां ना हो, लेकिन आंतरिक चुनौतियां, अलगाववाद और वैचारिक मतभेद मौजूद हैं। ऐसे में वंदे मातरम हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाता है।

0: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल और हिजबुल्ला लेबनन में संघर्ष रोकने पर सहमत। अमेरिका के रक्षा विभाग ने पेंटागन प्रेस कार्यालय क्षेत्र में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाई। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मामला भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमा भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम

0: दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया और पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए संवाद के पहले संस्करण के बाद से बढ़े परामर्श और सहयोग पर विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को नवीनीकृत और सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रधानमंत्रियों की प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ने भारत को वर्ष 2026 के ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रम, हिंद प्रशांत क्षेत्र और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इजराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। उधर ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनन में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमरीका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्शी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने प्रेस कार्यालय को गोपनीय और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब पत्रकारों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। पेंटागन ने कहा कि संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ट्रंप प्रशासन और मीडिया के बीच तनाव बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में पेंटागन को कवर करने वाले कई पत्रकारों पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: हॉकी में जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। 11 जून से शुरू होने वाला फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रसारण भारत में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड करेगा। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज टॉन्टन में खेला जाएगा। फिलहाल ये श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने पेंटागन प्रेस कार्यालय क्षेत्र में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाई। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। श्रोताओ, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं रोशन के संगीत निर्देशन में केदार शर्मा का लिखा गीत, आवाज राजकुमारी की है और फिल्म का नाम है बावरे नैन। इस गीत को सुनना चाहते हैं गया जीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी, राधेश्याम चावला, राजपुर से घिस्सू दिलबारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता स्मिता, सौरभ कुणाल दिलवारे। इस गीत को सुनना चाहते हैं जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ, बस स्टैंड बंडा बेलई से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली, वैष्णवी, दीपेश, लल्लू, हल्ले और ऋषि।

अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश का गाया ये गीत, फिल्म है मल्हार। गीतकार इंदिवर, संगीतकार रोशन। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शुभांग सृष्टि गदरे। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म है भरोसा। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि। अनुरोध आप सबका। पिंडरई मंडला से कमला प्रसाद शर्मा, कृपाल पटेल, कबीर जैन, सुमत कुमार जैन, संजय जैन, मोहम्मद मोहराली, राधेश्याम केवट, वरुण जैन। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा।

आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब सुनिए फिल्म सीआईडी का ये नगमा। बोल जानिसार अख्तर के हैं, धुन बनाई है ओपी नैयर ने। सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। बिलहरी बड़खीरा से कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, सुजीत वर्मन, अफजल खान। ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता माखीजा, माही पूजा, चुटकी शरद और उनके परिवार के सदस्य। इसी गीत के लिए फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। यंग रेडियो लिसनर्स खोआ मंडी जवाहरगंज जबलपुर से महेंद्र जैन, जिनेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और कमल बारोट का गाया ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है दूल्हा दुल्हन। इस गीत को सुनना चाहते हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन तान्या, महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल धनजे, विशाल धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, कुंदानगर खरगोन से ध्रुवा सुनावणे, सुनीता सुनावणे, खुशी प्रियांश, आशीष पूनम, कृष्णा शुभम सुनावणे, प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश, अंजलि, संदीप, माधुरी, पिंटू और जय श्री खंडाले।

अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है, फिल्म का नाम आस का पंछी। इस गीत को सुनना चाहते हैं सरगुजा मेनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन वली डोम, डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा अकरम उल्लाह, सरो चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब, साइमा मुस्ताबा, राउफ शाहिद, अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा।

अब सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत फिल्म का नाम है उजाला, आवाज़ लता मंगेशकर की। सुनना चाहते हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी लक्की रोली, श्वेता और परु, बिरसिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, अरुण विश्वकर्मा, शुभम विश्वकर्मा, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

अब सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म है बैजू बावरा, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद। सुनना चाहते हैं घंटाघर चौक, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र सन्मति पंचोलिया, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सारंगा समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:58 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से न्यूज हेडलाइंस।
1: सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम की बसें 1 अगस्त से चलाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में कल हुई बैठक में इस बारे में चर्चा की गई। और नौतपा के आखिरी दिन आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज राज्य के 40 से अधिक जिलों में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। गर्मी की भीषणता में कुछ शीतलता लेकर आते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम। तो तैयार हो जाइए हमसे बातें करने और हमारी पसंद के गीत सुनने के लिए। तो लगाइए नंबर 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। आप लोग तैयार हैं ना? तो चलिए आज हम आपको विषय देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बातें करेंगे श्रृंगार के बारे में। तेरी मुस्कान से महके जीवन का हर पल, जैसे फूलों पर ठहरा हो ओस का निर्मल जल। तेरी आंखों में देखा जब प्रेम का संसार, मन में खिल उठे सहसा खुशियों के हजार। तेरा स्नेह मेरा सबसे सुंदर श्रृंगार, तुझसे ही जीवन में आया है मधुमय बहार। तो दोस्तों फोन करिएगा और हमसे बातें करिएगा इस विषय पर कि श्रृंगार हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। तो हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का।
4: हेलो
3: जी, आपका फोन लग चुका है। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। हेलो
4: जी, फोन करें गीत सुने
3: जी। बात आपकी गीत हमारे हैं आज सर।
4: जी बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारे जी। नमस्ते।
3: नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी?
4: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
3: उज्जैन से
4: जी, हाँ
3: प्रेम सिंह जी।
4: जी जी जी,
3: आज हमने विषय लिखा है साज श्रृंगार। महिलाएं जो श्रृंगार करती है ना, उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगता है देखकर?
4: जी महिलाओं को तो ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार के बिना महिला अधूरी होती है
3: जी।
4: लेकिन इतना भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए कि मतलब कुछ ऐसे दिखे कि अलग हटके दिखे। हाँ, महिला सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार करती है और हर महिला का अधिकार भी है श्रृंगार करना, लेकिन साथ में पुरुष भी इतने मतलब पीछे नहीं हटते हैं ना दीदी, आपको बताऊं वो भी तैयार होते हैं, वो भी श्रृंगार करते हैं, वो मतलब किसी शादी समारोह में जाते हैं ना
3: जी,
4: तो इसी तरह से वो भी तैयार होके जाते हैं
3: जी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है ना
4: जी। बिल्कुल, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे तैयार होके जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हमारी तरफ लोग आकर्षित होंगे, तो ऐसा होना भी चाहिए
3: जी जी। तो
4: मैं बताऊं, अब मैं कहीं शादी में जाता हूँ ना तो अच्छी तरह से सज सवर के ही जाता हूँ, और अपने बच्चे हैं मेरे, बड़ी वाली लड़की बिंदिया है वो भी रेडी होके जाती है, उसके बाद कृष्णा है, साक्षी है, उसकी मम्मी है, मतलब हम सब तैयार होके जाते हैं ना तो ऐसा बतलाया जाता है कि हमारी फैमिली सबसे अलग ही दिखती है।
3: अच्छा जी,
4: हम सब लोग मतलब अच्छे से रेडी होके जाते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो है, अपडेट होकर जाना और अप टू डेट होकर जाना, यानी दोनों।

0: बहुत ज़रूरी है ना।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: आपने फ़ोन किया, आज बात आपकी, गीत हमारे हैं तो अपनी पसंद का कोई गीत हम आपको सुनवाएंगे। फ़ोन करने के लिए बहुत धन्यवाद
1: जी थैंक यू सो मच।
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी जी जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: बात आपकी गीत हमारे में, आज हमने विषय रखा है साज श्रृंगार के बारे में।
1: महिलाओं के
0: जी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, पुरुष भी तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना, तो हम कैसा फील करते हैं, और हम जब कोई बहुत अच्छे से तैयार होता है, मतलब व्यवस्थित होता है,
1: जी
0: तो कैसा लगता है हमें देखकर।
1: अब प्रमुख रूप से तो उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। अब
0: जी
1: पुरुषों का तो अनुभव थोड़ा सा कम रहता है।
0: जी तो अपना परिचय दे दीजिएगा पहले,
1: जी जी जी जी जी जी जी जी
0: बताइए अपने बारे में।
1: जी नमस्ते
0: जी जी बताइए।
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी
1: जी
0: जी बताइएगा कैसे हैं, वहाँ गर्मी कैसी हो रही है।
1: बहुत गर्मी है, 43-44 डिग्री तापमान चला जा रहा है।
0: जी जी तो इसीलिए तो हमने ये विषय रखा है कि ऐसी गर्मी में यदि हमें कहीं शादी ब्याह या फंक्शन में जाना है तो हम कैसे तैयार हों कि हम लास्ट जब लौटें तब भी उतने ही फ्रेश फ्रेश रहें। जी योगेश जी
1: उसमें काफी जो धूप होता है, पसीना आता है,
0: जी
1: तो वो काफी चैलेंजिंग होता है स्थिति को बनाए रखना।
0: जी जी जी
1: और रही बात साज श्रृंगार की, तो वो तो अपने अपने जो प्रदेश है या फिर अपने क्षेत्र हैं।
0: जी
1: हमारे यहाँ जैसे प्रमुख रूप से तो ग्रामीण परिवेश में, हमारे यहाँ ही नहीं लगभग सभी जगह
0: जी
1: साड़ी सबसे प्रमुखता होता है एक श्रृंगार के रूप में महिलाओं का।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: पुरुष जैसे हम लोग हो गए तो जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: यही चीजें बहुत आयत में चलती हैं। और श्रृंगार में तो जितना हम कर ले उतना कम लगता है।
0: जी क्योंकि 16 श्रृंगार माने गए हैं ना महिलाओं के तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है
0: जी जी
1: वो तो इन्हीं सब चीजों पर कह सकते हैं टिका हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश जी आपको ये नहीं लगता कि आजकल लोग थोड़ा सा इससे दूर जा रहे हैं जो।
1: हाँ, आधुनिकता है और तरह तरह की जो आजकल की जो हम आधुनिकता में जो देखते हैं
0: जी
1: वो कुछ ऐसी ऐसी चीजों को भी ट्रेंड में लेते हैं जिनसे हमारा ज्यादा मेल नहीं खाता है।
0: जी जी जी
1: जो
0: तो
1: पारंपरिक परिधान है
0: जी
1: और वो मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी जब हम पारंपरिक रूप से तैयार होते हैं शादी ब्याह में तो अलग ही दिखता है ना, पहचान ही नहीं
1: जी
0: आते कि अरे वो ये वही है।
1: जी जी जी
0: तो फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और
1: धन्यवाद।
0: जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: जी नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे आपकी सेवा में हम हैं।
1: नमस्कार मैम।
0: जी
1: मैं शिवपुरी जिले के रामकीड़ी गांव से मोतीलाल परियार बोल रहा हूँ।
0: मोतीलाल जी, मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: जी मैम नमस्ते।
0: जी मोतीलाल जी, कहाँ से, जगह कहाँ है आपकी?
1: शिवपुरी जिले के रामखेड़ी मारा से परियार बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी कैसे हैं मोतीलाल जी?
1: कृपया मैडम ईश्वर की और आप लोगों की।
0: जी हम लोगों का सबका स्नेह है आपके साथ। अच्छा मोतीलाल जी, आज जैसे आपके नाम में ही मोती लिखा हुआ है, तो आज हम साज और श्रृंगार के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम श्रृंगार करते हैं या बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है और लोग हमें किस तरह से देखते हैं, आज हम वही बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी मैम, तो
0: बताइए, महिलाएं जब श्रृंगार करती हैं और जब वो निकलती हैं घर से, तो कभी वेणी लगाती हैं, कभी सिंदूर, कभी बिंदी लगाती हैं, तो कैसा लगता है देखकर?
1: जी मैम ऐसा ही है कि बढ़िया लगता है। वो जो बड़ी श्रृंगार करके जाते हैं तो मिलते जुलते हैं रिश्तेदारों में।
0: जी
1: और
0: जी
1: बढ़िया।
0: और मोतीलाल जी, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, पता है? जब पैरों में हम पायल पहनते हैं, पहले देखा था कि बहुत मोटी मोटी पायलें पहनी जाती थी, तो
1: जी
0: जो
1: मैम अब भी तो पहनती है ना।
0: जी तो जो पहनती है ना, उनके कमर में, पैरों में उनके दर्द नहीं होता है, लेकिन जो नहीं पहनती हैं उनको ज़्यादातर शिकायत रहती है। और यदि शिकायत रहती है और वो अच्छी मोटी मोटी पायलें पहन लेते हैं, पहले तो जैसे करधोनी भी पहनी जाती थी, करधन बोलते हैं जिसको, तो ये अपनी जो स्पाइन है, अपनी रीढ़ की हड्डी, ये दबी रहती थी और ये बहुत सारे दर्द हमें नहीं होते थे। आप क्या बोलते हैं इस बारे में?
1: जी मैम क्या है वो, जैसे हमारे गांव में तो सब औरतें पहनती हैं, अब भी पहनती हैं।
0: जी
1: वो जो बाजार साइड में, वो बाजार में कुछ नहीं पहनती,
0: हाँ
1: तो गांव में तो अच्छी लगता है उनको पहनना।
0: जी, तो वो स्वस्थ भी रहती हैं, आप देखिएगा, है ना?
1: बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। वे तो उनका शौक ही यही है मैडम।

0: सुना
1: हाँ तो देखिए हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, है ना।
0: रहूंगा।
1: पहले तो गले में हंसली और ये सारी चीजें पहनी जाती थी स्वस्थ रखने के लिए। तो मोतीलाल जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए, और
0: नमस्ते।
1: सुनते रहिएगा आकाशवाणी मत।

0: हेलो
1: जी, बात
0: जी, नमस्कार।
1: आपकी गीत हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है कि आज बात आपकी गीत हमारे होना है।

0: है ना, जो हम वेणी लगाते हैं, चूड़ी पहनते, बिंदी महावर लगाते, मेहंदी लगाते, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: जी
1: श्रृंगार तो खैर ठीक है अपनी जगह, लेकिन तो सबसे बड़ा श्रृंगार तो आपका सादगी और आपका चरित्र सबसे बड़ा श्रृंगार
0: जी जी जी
1: है
0: जी
1: ना। सारी चीजें अपन लोग करते हैं ठीक है, लेकिन
0: जी
1: सबसे बड़ा जो है वो तो आपका उसमें झलकना चाहिए आपके किरदार से, है
0: अरे वाह वाह जी, यही तो हम चाह
1: ना।
0: रहे थे कि कुछ ऐसी बातें निकल कर आए जो कि हमारे श्रोता भी लाभान्वित हो जाएं उससे।
1: जी जी जी है ना।
0: तो
1: बाकी बाहरी रूप रंग तो ठीक है, आदमी को अपना मेंटेन करना चाहिए, है ना।
0: जी
1: ईश्वर के दिया हुआ रूप रंग होता है
0: जी जी
1: ना,
0: जी
1: जो जैसा है उसको अपन वैसा स्वीकार करें और उसको अपन थोड़ा बहुत मेंटेन भी किए रहे वक्त
0: हाँ
1: के हिसाब से, है
0: जी जी जी
1: ना। जैसे धूप पड़ रही है तो उसमें अपनी सुरक्षा रखें अपन, या बारिश में इधर उधर जहाँ जैसा भी है,
0: जी जी अब जैसे
1: लड़की
0: कोई
1: है ये
0: घर
1: है
0: में कोई
1: वो।
0: फंक्शन होता है या कहीं जाते हैं तो थोड़ा सजना धजना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ नहीं बिल्कुल करना भी चाहिए
0: हाँ
1: वो, करना जी वक्त की डिमांड के हिसाब से वो
0: जी
1: चीज
0: जी
1: अच्छी भी
0: जी जी
1: है ना, करना चाहिए। लेकिन इतना मतलब ओवर भी ना हो जाए मेकअप के, स्किन को भी नुकसान हो या कोई
0: हाँ
1: मतलब वैसे लोग कमेंट्स करें कोई, है ना,
0: जी जी जी
1: ये है तो
0: आज जो
1: इतना।
0: इतने प्रोडक्ट चल रहे हैं कि सुंदर बनाने के लिए, उसका भी हमें बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए ना।
1: जी, मतलब प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन
0: जी
1: मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इफेक्टिव हैं,
0: जी वही वही
1: है ना।
0: वही
1: बिल्कुल
0: आज का,
1: बाकी चीजों
0: आज
1: में ही।
0: आज इस बात आपकी गीत हमारे में ये विषय लेने का यही मतलब है मेरा कि हम अंधाधुंध या जो हम देख लेते हैं इधर के विज्ञापन में इसमें, उसके हिसाब से ना जाकर बहुत प्रैक्टिकली सोचें और फिर अपने ऊपर यूज करें उस सब सामान
1: बिल्कुल,
0: का।
1: जो चीज अपन को सूट कर रहा है उसी को यूज करें, और ज्यादातर ये हो कि हर बार अपन यूज करें, है
0: जी जी जी
1: ना, तो ज्यादा अच्छा है उसमें।
0: अब श्रृंगार में देखिए उबटन है तो हमारे यहाँ बताया गया है कि घर का ही उबटन करें, बेसन ले लें और चावल और
1: जी
0: दाल
1: जी
0: का
1: जी
0: निकाल के, है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: दही
1: बिल्कुल
0: है
1: सही कह रहे हैं
0: और फ्रूट्स
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: इस हिसाब से करेंगे तो आप सुंदर भी रहेंगे और कोई नुकसान भी नहीं है इससे।
1: जी जी मेन वही है कि मतलब श्रृंगार करें लेकिन कोई नुकसान ना हो, वो ज्यादा सही
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। और बाकी तो सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार है ना,
0: जी जी जी जी
1: सिंपल रहना, मतलब उच्च विचार, है ना।
0: जी
1: ओके अच्छा, एक दूसरा आज हम थोड़ा सा एक चर्चा एक मिनट की और कर ले, मत कि
0: बताइएगा।
1: सुमन कल्याणपुर साहिबा गुजर गई हैं कल, है
0: जी जी जी जी
1: ना। तो उन क्योंकि फिल्म संगीत से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: अब पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम मतलब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, है
0: बिल्कुल, पूरे
1: ना।
0: श्रोताओं
1: भगवान
0: और हमारी आकाशवाणी परिवार, पूरा मध्य प्रदेश, क्या पूरा भारत ही उनको श्रद्धांजलि दे रहा है ना।
1: जी, बिल्कुल,
0: तो
1: ईश्वर उनकी
0: एक
1: आत्मा को शांति दे, उनके
0: बिल्कुल
1: तमाम प्रशंसकों को दुख झेलने की हिम्मत दे,
0: बिल्कुल
1: और उनकी
0: बिल्कुल
1: आवाज लगातार गूंजती रहेगी क्योंकि उनकी
0: बिल्कुल
1: आवाज सुनते सुनते अपन लोग बड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी,
0: चलिए इस अहमद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू मैम, थैंक
0: जी
1: यू,
0: जी
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी दीदी नमस्कार।
0: जी, आज हमने
1: मैं ग्राम वापुष्ट गौना कुसमार थाना सूजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है दीदी।
0: दीपक जी जी दीपक जी, आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार के बारे में। जी, तो आप क्या करते हैं दीपक जी?
1: जी मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, आप सही, तो श्रृंगार आप ही कराते हैं लोगों का
1: जी, अगर लोग जैसे कपड़े बनवाते हैं जिस प्रकार के, तो सभी प्रकार के डिजाइनों कई डिजाइनों द्वारा कपड़ा बना देते हैं और वही व्यक्ति को पहना देते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे
0: जी
1: शादी ब्याह में, अगर शादी ब्याह की रस्में हो तो फिर अगर दूल्हे का कोट पैंट हम लोग ही नहीं बनाएंगे तो कहाँ से वो श्रृंगार होगा, कहाँ से अच्छा लगेगा।
0: हाँ, वही तो कह रहे हैं कि पूरा बेसिक चीज तो आप ही उसमें तैयार करते हैं उनको। तो बताइए, क्या महत्व है अच्छे कपड़े, मतलब फिटिंग के, और अच्छे कपड़े पहनने का, साफ सुथरे प्रेस किए हुए, और थोड़ा बहुत श्रृंगार करने का क्या महत्व है?
1: सबसे पहले अच्छा कपड़ा हम लोगों का राजा रंग कहलाता है, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का कपड़ा।
0: जी
1: अगर वो कपड़ा व्यक्ति को बन जाए और उसका फिटिंग का बन जाए तो काफी अच्छा लगने लगता है और व्यक्ति बहुत ही सुंदर लगने लगता है।
0: जी
1: कपड़ा जैसा चाहे तो इतना ही खराब कपड़ा हो, लेकिन उसकी फिटिंग बनावट सही आ जाए तो कपड़ा ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है और आदमी को भी अच्छा लगने लगता है।
0: बिल्कुल
1: और हमारे घर में लेडीज काम भी होता है, तो दुल्हनों का हमारी बहन भी तैयार करती है वैसे, और
0: जी
1: कपड़े भी बनाती है लहंगा चुनरी, तो बहुत अच्छा साज सज्जा कर लेती है।
0: जी जी तो मतलब एकदम रूप परिवर्तन हो जाता है ना साज श्रृंगार और अच्छे कपड़े
1: जी
0: पहनने के बाद।
1: वही तो मेकअप को अगर कितना ही कलर मद्दा हो मेकअप कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को आप पहचान नहीं सकते हैं।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल रूबरू हो जाता है, बिल्कुल अलग
0: जी
1: से रूप बदल जाता है उसका।
0: जी बिल्कुल, यानी कि हम बहुत सुंदर कर देते हैं लोगों को, है ना, साज श्रृंगार
1: जी
0: से। तो आप किसके, जेंट्स के कपड़े सिलते हैं या महिलाओं के सिलते हैं?
1: जी हम तो दोनों सिल लेते हैं, लेकिन बहन हरे हैं तो वो लेडीज सिलती हैं, हम जेंट्स सिलते हैं। लेकिन बना तो हम लोग दोनों लेते हैं, जेंट्स भी बना लेते हैं और लेडीज भी बना लेते हैं,
0: अच्छा, जी,
1: क्योंकि हमारा पैतृक धंधा सिलाई ही है दीदी।
0: जी तो चलिए दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही लोगों को सुंदर बनाते रहिए। फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्कार दीदी।

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आँखों में बस।

0: हेलो
1: हेलो, मध्य प्रदेश भोपाल
0: जी। मध्य प्रदेश भोपाल से बात आपकी गीत हमारे। आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार के बारे में, है ना? कैसे सजना धजना जो 16 श्रृंगार हमारे माने गए हैं ना, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले।
1: मैं कालीचरण यादव बोल रहा हूँ, संबलपुर हाथरी से।
0: जी जी आपका नाम?
1: आप मैडम कौन बोल रही हैं?
0: मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: आपने नाम बोले थे रेडियो पर।
0: जी जी
1: आपको समय मैं तो बता नहीं पाऊंगा, समय मैं बाप बता।
0: जी जी
1: हाँ
0: तो कुछ बोलेंगे आप?
1: क्या बोला बोला आप बताओ।
0: अरे यही कह रहे हैं कि जब हम सज धज जाते हैं, लोगों को सजा धजा देखते हैं, अच्छे से तैयार हुए देखते हैं, तो हमें कैसा लगता है?
1: अच्छा लगता है ना, कहीं जा रहे हैं सज धज के तो।
0: जी जी
1: हाँ कहीं जा रहे हैं शादियों में, कहीं पार्टियों में, अच्छा लगता है।
0: जी जी
1: हाँ
0: तो वैसे भी घर में बहुत अच्छे साफ सुथरे और धुले धुलाए कपड़े और रोज धो के कपड़े पहनना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: साफ सफाई तो अच्छे लगेंगे, कपड़े अच्छे पैरों तो अच्छे लगते हैं।
0: जी जी तो
1: सफाई
0: आपका
1: रखो घर में, कहीं जाऊँ तो बस। हाँ
0: आपका नाम मैं फिर से सुन सकती हूँ?
1: कालीचरण यादव, संदलपुर से।
0: सुंदलपुर,
1: संदलपुर आदरी की बात गाँव में मेरा,
0: जी
1: संदलपुर
0: जी
1: ग्वालियर के पास में।
0: जी जी जी तो चलिए, आपने फोन किया उसके लिए बहुत

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: जी, आज आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार, यानी सजना धजना। इसके बारे में आपसे बात करेंगे, तो अपना पहले परिचय दीजिएगा और फिर

0: जगह का नाम बताइए और इसके बारे में कुछ बताइएगा आप।
1: मैं ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ।
0: राम नरेश जी,
1: जी
0: जगह का नाम क्या बताया आपने?
1: ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश।
0: राजगढ़ से जी जी बताइए राम नरेश जी।
1: जी
0: साज श्रृंगार जब हम सजते धजते हैं या घर की महिलाएं जब बहुत अच्छे से तैयार होती हैं तो क्या फीलिंग होती है और क्यों हमें जो 16 श्रृंगार हमारे बताए गए हैं वो क्यों जरूरी हैं?
1: अब ये तो देखिए घर की जो महिलाएं रहती है 16 श्रृंगार के विषय में वो बेहतर बता पाएंगे और उनमें किस तरह की भावना आती है, किस तरह की फीलिंग आती है।
0: तो आपके आपके घर में है कोई महिलाएं, बात कराइए हमें।
1: अभी तो नहीं और मेरे ख्याल से जो हैं वो स्पष्ट रूप से आपको अपने विचार नहीं बता पाएंगी।
0: तो आप ही बता दीजिएगा आप क्या फील करते हैं कि मतलब ये जो अपने जेवर हैं या गहने हैं ये पहनना चाहिए कि नहीं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, जो जेवरात होते हैं, जो गहने होते हैं, जो आभूषण जो पहनती हैं हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं तो वो तो खैर उनको अच्छा ही लगता है और हर स्त्री चाहती है कि मैं किसी समारोह में जाऊं, विवाह समारोह हो, कोई भी बर्थडे पार्टी हो, तो सबसे अलग दिखूं या यूं कहे कि एक आकर्षण हो और दूसरी उनकी जो साथी मित्र हैं वो पूछें कि बड़ी अच्छी लग रही हो
0: हाँ।
1: या फिर ये गहना कैसे लिया
0: जी, जी।
1: इस तरह की बातें वो करे तो वो बेहतर से बेहतर तैयारी करती हैं कि पूरी कोशिश करती हैं कि हाँ कि मैं अच्छी दिखूं, अच्छी सजूं, सवरूं, लोगों अच्छा लगे और तारीफ करें, ऐसा भी भावना आती है, फीलिंग आती है महिलाओं के लिए।
0: राम नरेश जी, और जब उनको उपहार में पति या भाई या पिता कुछ आभूषण देते हैं तो बहुत खुश होती हैं ना?
1: हाँ, जो घर की महिलाएं होती हैं जैसे पति हुआ या कोई भाई हुआ, जैसे मान लो रक्षाबंधन पे भाई ने कुछ पायल का उपहार दिया तो वो इस चीज को संभाल के रखती है कि ये मेरे पीहर का है, मायके का है और इस चीज को बड़ा वो संभाल के रखती हैं और पहनती हैं। और कई बार जैसे कोई अच्छा उपहार मिला और उसे पहन लिया तो दूसरी महिलाएं पूछती है बड़ी अच्छी है, कितने में ली? तो वो कहती है कि हमने ली नहीं, हमारे भैया ने उपहार में दी है, या फिर हाँ, या फिर वो कहते हैं हमारे पति ने हमें उपहार में दी है या हमारी माँ ने हमें उपहार में दी है। तो इस तरह की बातें होती हैं। और जहाँ तक सजने संवरने की बात है तो हर स्त्री को सजना संवरना चाहिए क्योंकि मानुष्य जीवन मिलता है और सजना संवरना और अच्छी तरह से साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना, वो कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा का उसमें भाव होता है और माता अन्नपूर्णा तो एक हमारी जो भारतीय नारी होती है वो जिस तरह से वो सजती संवरती है ऐसा लगता है कि देवी का स्वरूप हो।
0: बिल्कुल, तो हमारी जो देवियां हैं वो भी पूरे श्रृंगार में रहती हैं ना?
1: पूरे श्रृंगार में रहती हैं और जब उनको देखते हैं तो एक देवी जैसी भावना आती है, अच्छा लगता है कि हमारे मन में एक सम्मान जागता है कि हमें जो हमारी भारतीय नारी हमारी माता है बहन का हमें सम्मान करना चाहिए। और जो वो शक्ति संवरती है सजना संवरने से व्यक्ति हुआ या महिला हुई या कोई भी हुई वो थोड़ा देखता है कि जैसे महिला कहती है अरे आपने कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है
0: जी,
1: आज
0: जी।
1: तो आपने चोटी बड़े अच्छे ढंग से की है, उस पार्टी में आपने उस तरह से की थी, इस पार्टी में इस तरह से की है, बड़े अच्छी की है इस तरह से।
0: चलिए तो बहुत सारी बातें आपसे हो गई राम नरेश जी और आपने बहुत अच्छे से बताया है तो फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका और जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये था कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। आपने बहुत सारी बातें की और आपने बहुत अच्छे अच्छे गीत सुने। इसी के साथ आज्ञा दीजिए साधना जैन को।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। फोन इन कार्यक्रम था ये, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियोगिता में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू कर दिया है, जो 6 जून तक खुला रहेगा। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्रामीण उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपये में स्थायी घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। इस योजना में दिसंबर 2024 से अब तक 83,936 ग्रामीणों को लाभ मिल चुका है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र अथवा कंपनी के कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती के अवसर पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भजनों से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम

0: नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। अब भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत रहना है तेरे दिल में इस फिल्म से है। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, समीर का गीत और हरीश जयराज का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधरे, आरती जोंधरे, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

अगला गीत की फरमाइश भेजिए घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित ने इन्हें सुनना चाहा है। कोयला फिल्म से ये नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक, मीका बिरक, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सबने सुनना चाहा है मन फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और हेमा सिर देसाई की आवाज़ें हैं, समीर का गीत है और संजीव दर्शन का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा। ग्राम अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर ने। इन सब ने सुनना चाहा है बॉम्बे फिल्म का ये नगमा चित्रा की आवाज़ में, महबूब का गीत और ए आर रहमान का संगीत।

0: भी यदि किसान भाई उपयोग करते हैं तो उन्हें
1: कार्यक्रम का
0: प्रतिवर्ष
1: अंतिम नगमा
0: बारह महीने
1: गुलाम
0: देना
1: फिल्म
0: पड़ता
1: से,
0: है और साधारण
1: आवाजें
0: जो है
1: कुमार
0: उसको
1: सानू रल का
0: प्रतिवर्ष
1: याग्निक
0: बोलने
1: की,
0: की आदत
1: समीर का
0: डालनी
1: गीत और
0: होती है।
1: जतिन ललित का
0: साधारण
1: संगीत।
0: जो है यदि
1: इस गीत को पसंद
0: प्रतिवर्ष
1: करने वाली
0: तीन
1: श्रोता
0: चार
1: हैं
0: साल तक किसान भाई
1: सिंहपुर
0: उसको
1: बड़ा
0: लगातार
1: से
0: उपयोग कर
1: राजेश
0: सकते
1: नेमा,
0: हैं।
1: संगीता, भावना
0: मजदूरों
1: और
0: की
1: प्राची
0: पैदावार के
1: नेमा,
0: लिए मॉडर्न किस्म जो है वो अधिक उपयोग
1: करिया
0: मानी
1: दंड
0: जाती
1: हट्टा
0: है। यह
1: बालाघाट
0: किस्म जो है
1: से
0: 15 से 20
1: हुलास राम
0: क्विंटल आउटपुट
1: कटरे,
0: देती है और
1: नानेश्वरी
0: संकर
1: कटरे,
0: किस्मों में केवीएस एच1,
1: सरोचो कमरावती महाराष्ट्र
0: एमएसआर
1: से,
0: एच1, एमएसआर
1: कमरुल्ला,
0: एच2,
1: नसीम बेगम,
0: केवीएस
1: आयशा खान,
0: एच11,
1: हादिया खान,
0: ज्वालामुखी
1: अस्मा
0: नाम जो
1: सालिया,
0: किस्म है,
1: शुएब
0: संकर
1: खान,
0: किस्मों में
1: साइमा
0: बीमा
1: खान,
0: देश के लिए अनुकूल
1: मुस्तफा
0: परिस्थितियों में
1: खान,
0: अच्छी
1: अफिया
0: क्वालिटी
1: खान,
0: की
1: राउफ
0: दस
1: भाई,
0: लाख हेक्टेयर
1: शहीद
0: कृषि में
1: भाई,
0: 100 से 500
1: गांधीबाग
0: हेक्टेयर
1: अकोला से,
0: होती है
1: रमेश
0: और
1: कटनकर
0: इसके
1: और
0: उपजाऊ
1: वैशाली
0: सामान्य से
1: कटनकर।
0: ज्यादा प्राप्त होती
1: आप
0: है।
1: सबकी
0: 18 से 20
1: फरमाइश पर
0: क्विंटल
1: सुनिए
0: ही आपको
1: कार्यक्रम
0: क्विंटल
1: का
0: ही
1: अंतिम
0: मिलेगी।
1: गीत।
0: तब बोली के

या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से होने लगे चिराग जलाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाए, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने, सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की

रूमी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिस्कियां। खुशियों से पांग दें। ये धारावाहिक प्रेमलता बटलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: प्रस्तुत है धारावाहिक की सातवीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता मुश्ताक के घर तलाक नामा भिजवाती है और मुश्ताक गुस्से में आकर तलाक नामे पर दस्तखत कर देता है। इधर फाता मुश्ताक का दस्तखत किया तलाक नामा दिखाकर पैसों के लिए सारे का दूसरा निकाह करवाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब आगे
1: नूरी, नूरी मेरा सामान बांध, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: तुझसे जितना कहा उतना ही किया कर।
2: कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे ये तो बता दो।
1: बहस ना कर, तुझसे जितना कहा उतना ही कर, समझी?
2: अजीब आदमी हो तुम, कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं बता सकते।
1: शहर जा रहा हूँ, एक महीना लग जाएगा वापस आने में शहर से।
2: अच्छा, सामान में क्या क्या बांध दूँ?
1: नूरी नूरी, मुझे देर हो रही है, सामान बांध जल्दी से, चल।
2: बांधती हूँ।
1: और सुन, पहले एक कप चाय पिला।
2: ये लो चाय।
1: रख दे, मेरे सिर पे रखेगी क्या? और खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल। ये चाय है, ये चाय बनाई है तूने, ये ले।
2: अब चाय में क्या खराबी थी?
1: चाय में क्या खराबी थी? हाँ, जा अपने अपने बाप से पूछ कि क्या खराबी थी। ऐसी घटिया चाय पिलाकर मारेगी मुझे?
2: देख देख रसूल, तू बात बात पर बाप का नाम ना लिया कर।
1: क्यों, बाप बहुत पसंद है तो यहाँ क्यों आई? वहीं रहती, मेरे सर मरने की क्या जरूरत थी तुझे?
2: रसूल बस करो, मैं बहस नहीं करती। तुम्हें जाना है जाओ, मुझे जो कहना है कहो, पर मेरे बाप का नाम बीच में ना घसीटो।
1: जुबान लड़ाती है।
2: हाँ, औरत पर ही हाथ उठाएगा ना मर्द।
1: जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है।
2: अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा।
1: अच्छा, अरे तुम औरतों को जब तक मार ना पड़े तब तक अक्ल ठिकाने नहीं आती तुम्हारी।
2: ये क्यों नहीं कहते कि अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए हम औरतों पर जुल्म करते हो?
1: नूरी नूरी, अपनी जुबान बंद कर, मुफ्त की खाती है तो तुझे चर्बी चढ़ गई है।

0: रसूल, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा।
1: नूरी, नूरी तू औरत है, औरत के धर्म को मान, पति जो करे जैसा कहे उसे मान। अगर मैं तुझे अपने पैर की जूती बनाकर रखूं तो भी तुम्हें अपना धर्म समझकर मानना चाहिए।
0: तू अपने मर्द होने पर इतना इतरा क्यों रहा है? मैं जानती हूँ तुझे बाहर से अंदर तक कि तू कितना मर्द है, और तेरे मर्द होने पर जो औरतों को अपनी जूती बनाकर रखना चाहता है, थूकती हूँ ऐसे मर्द पर।
1: अब समझ में आया कि मर्द कौन है और कैसा होता है, है?
0: तुम एक औरत को गलत समझ रहे हो। वो तुम्हारी जूती नहीं बनेगी, और अगर तुम मार पीट कर गाली गलौज कर उसे अपने वश में रखने की बात सोच रहे हो तो भूल कर रहे हो। औरत प्यार में बंद कर रह सकती है, गुलाम बनाकर औरत को नहीं रख सकते।
1: अच्छा, औरत हमेशा से मर्दों की गुलाम रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। तेरे कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तू मेरी है, जैसे मैं तुम्हें रखता हूँ तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा, समझी?
0: अब ऐसा नहीं होगा। जब से तुम्हारे साथ हूँ तुमने मेरे साथ जुल्म ही किए हैं, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहूंगी। अगर तुम्हें सलीके से रहना है तो ठीक है, नहीं तो आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग।
1: नूरी, मर्द के बिना औरत के बिसात ही क्या है? मैं हूं तो तू है, और मेरे बगैर तू कुछ और सोच भी नहीं सकती, समझी?
0: तुम भूल कर रहे हो, अगर मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ तो तुम्हारे जुल्म से नफरत भी कर सकती हूँ। अगर तुम अपने जुल्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ।
1: चल चल, अपनी बेतुकी बातें छोड़ और घर का काम कर। चल, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मेरा बैग तैयार कर, चल, मुझे देर हो रही है।
0: मेरा फैसला भी सुनते जाओ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ।
1: क्या, तलाक?
0: हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म।
1: पागल हो गई है क्या?
0: ये मेरा फैसला है, तुम्हारे जुल्मों को अब मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, आज से हमारा रास्ता अलग अलग होगा।
1: नूरी, रुको रुको, नूरी नूरी।

0: फाता फाता जरा सुनना।
1: आप कहो।
0: फाता, तुमने सारे के निकाह के लिए लड़का देखने को कहा था ना?
1: हाँ, कहा तो था। कोई नजर में है क्या?
0: अब है तो, मगर उसका एक तलाक हो चुका है। वैसे तुम जानती होंगी उसे।
1: कौन है?
0: अरे वही, अरे अपने रसूल मियाँ, अरे वही जो ड्राइवरी किया करता है।
1: अरे उस मुए का तो निकाह हो चुका था।
0: फाता, उसका निकाह नूरी से हुआ था और नूरी ने उसे तलाक दे दिया है। अगर अगर तुम कहो तो मैं रसूल मियाँ से बात करूं।
1: रसूल वैसे कमाता कितना होगा?
0: कमाता तो है, और सुना है जल्द ही अपनी मोटर कार लेने वाला है। सारे को रानी बना कर रखेगा पाता।
1: अच्छा, मैं आज ही रसूल से मिलती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलूंगा। और हाँ, वो रसूल मियाँ से मिल जरूर लेना पाता। खुदा हाफिज़।
1: खुदा हाफिज़।

0: कौन है?
1: मैं हूँ फाता।
0: आओ आओ बैठो। मेरे तरफ कैसे आना हुआ?
1: मामिया, तुमसे जरूरी काम था, एक बात करनी थी तुमसे।
0: हाँ हाँ, कहो क्या बात है?
1: बुरा ना मानना, सुना है नूरी से तुम्हारा तलाक हो गया।
0: अरे नाम ना लो उस चुड़ैल का।
1: अरे अरे, तुम तो बुरा मान गए बेटा। मैं भी तो अच्छा, छोड़ो, एक बात बताओ, अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो दूसरा निकाह करोगे?
0: अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पहले मुझे ढेरों पैसे कमाने हैं और जल्द ही मुझे एक मोटर कार भी लेनी है, और फिर उसके बाद ही कुछ और सोचूंगा।
1: हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा है। जिंदगी में पैसा कमाना तो बड़ी अच्छी बात है। खुदा तेरी मुराद जल्द ही पूरी करें।
0: फाता, आप किसी लड़की की बात कर रही थी?
1: हाँ, वो सारे को तो तुम देख ही रहे हो।
0: हाँ हाँ, पर उसका निकाह तो मुश्ताक से हुआ था।
1: हाँ, पर नसीब ही खराब था बेचारी का। निकाह के कुछ समय बाद मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया।
0: क्यों?
1: अरे, अब तुमसे क्या छिपाना, हमारी स्थिति तो तुम जानते ही हो। सारे के अब्बा ने चौकीदारी करते करते अपनी जिंदगी गुजार दी। अब हमारे पास देने को कुछ बचा ही क्या है कि उस मुश्ताक को देते। हमने कहा भी कि हमारे यहाँ ही आकर रहो, पर वह माना नहीं और सारे को तलाक दे दिया।
0: चिंता ना करो, अगर मुझसे कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना।
1: मेरी बात पर जरा गौर करना बेटा,
0: जी।
1: सारे के बारे में सोचना, मैं फिर आऊंगी कभी। अभी चलती हूँ बेटा।
0: जी, सोचूंगा। खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।
2: रसूल, ये फाता क्यों आई थी यहाँ पे?
0: अब बस यूं ही आई थी।
2: फाता यूं नहीं आ सकती मियां, उधर जरूर कोई काम रहा होगा।
0: अरे वो अपनी बेटी सारे की बात कर रही थी।
2: सारे की बात?
0: हाँ।
2: अभी अभी तो उसका मुश्ताक से तलाक हुआ है, बड़ी अच्छी लड़की है वो।
0: तुम जानते हो उसे?
2: बहुत अच्छे से।
0: कैसी है?
2: देखोगे तो देख तो रह जाऊंगे मियाँ।
0: अच्छा,
2: जन्नत की परी लगती है। हा? एक बार उसको देख ले, उसके हुस्न के जादू से बच नहीं सकता मियाँ।
0: अच्छा, तो मैं सारे के लिए हाँ कर दूं?
2: अरे इसके लिए तुम्हें फाता को बस में करना होगा और उसे कुछ पैसे जरूर देने होंगे मियाँ।
0: अच्छा,
2: और वो तुम्हारे बस में हो जाएगी, वो खुश होगी तो बात आसानी से पड़ सकती है।
0: फिर तो समझो मियाँ कि ये रिश्ता पक्का हुआ।
2: फिर तो मियाँ बात बन गई।

0: अरे भाई फजी,
1: आ गए आप।
0: हाँ भाई, ले ये सामान रख लो। लो तो हाँ भाई, वो मुश्ताक का बुखार उतरा या नहीं अभी?
1: नहीं, नींद में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे फजी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हकीम ने दवा

0: करती है उसे खिला दो। खुदा ने चाहा तो आज रात तक बुखार उतर जाएगा।
1: हाजी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो।
0: अरे भाई, सोचता तो मैं भी हूँ, पर कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए तो किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
1: सारे से तलाक क्या हुआ, बिस्तर पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा।
0: अरे आदमी तन के जख्मों को आसानी से झेल सकता है, लेकिन मन पर लगे जख्मों को भरने में वक्त लग जाता है। देखो फजी, सारे का जाना हमें बुरा लग रहा है, तो मुश्ताक की तो वो बीवी थी। मुश्ताक के लिए एक बुरा दौर, एक बड़ा इम्तहान है ये। मुश्ताक कमजोर न पड़े, बस सब ठीक हो जाएगा।
1: अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर, ठीक कर दे उसे। उसकी सलामती ही हमारी जिंदगी है परवरदिगार।
0: अरे फजी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
2: अरे करीम भाई घर में है क्या?
0: कौन? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं घर में ही हूँ।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई जान।
0: वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई अकरम, आओ आओ बैठो। हाँ भाई कहो, कैसे आना हुआ?
2: बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे थोड़ी मुलाकात कर लो।
0: ये तो आपने अच्छा किया। अरे भाई, मिलते जुलते रहने से अच्छा लगता है। अरे भाई फजी, चाय तो पिलाओ।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी चाय लाती हूँ।
0: हाँ भाई अकरम, और सुनाओ, काम धंधा कैसा चल रहा है?
2: भाईजान, अल्लाह के रहमो करम से सब ठीक है। आप बताएं। सुना था मुश्ताक की तबीयत कुछ नासाज है, अब उसकी तबीयत कैसी है?
0: क्या बताऊं जनाब, जब से सारे से तलाक हुआ है बिस्तर से उठा ही नहीं।
2: ओहो, किसी डॉक्टर को देखा?
0: हिम्मत हार गया हूं अकरम। औलाद की तकलीफ बुजुर्गों की रही सही हड्डी तोड़ देती है। अब तो बस ऊपर वाले पर ही भरोसा है, अब वही कुछ करे तो करे।
2: भाईजान, आदमी की नीयत बदल जाए तो वो सिर्फ अपना ही नहीं औरों का भी बुरा करता है।
0: मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं?
2: अरे वही फाता की।
0: फाता की?
2: क्या आपको पता नहीं है?
0: क्या?
2: साराय का दूसरा निकाह हो रहा है।
0: सारे का दूसरा निकाह?
2: हाँ।
0: किसके साथ?
2: अब रसूल मियाँ को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं तो नाम तो जरूर सुना होगा।
0: रसूल से सारे का निकाह?
2: जी।
0: ये आप क्या कह रहे हैं? क्या फाता को मालूम नहीं कि रसूल एक नंबर का लफंगा आदमी है?
2: अजी मालूम क्यों नहीं है, पर लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा हो तो कोई क्या करे। रसूल तो अब फाता को पैसे भी देता है, और इसी लालच में आकर फाता सारे का निकाह रसूल से कर रही है।
1: चाहे किसका निकाह हो रहा है?
0: अरे सारे का निकाह हो रहा है।
1: क्या सारे का निकाह? किसके साथ?
0: रसूल के साथ।
1: रसूल के साथ? तुम तो कह रहे थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है, और उसका तो पहले भी निकाह हो चुका है।
0: अरे नूरी से निकाह हुआ था उसका।
2: लेकिन नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया, अब रसूल अकेला ही रहता है।
1: नूरी ने तलाक ले लिया?
2: हाँ, अब बेचारी और क्या करती।
1: सुना है भाई जान, नूरी भी बहुत बुरा बोलती थी।
2: अब नूरी कब तक जुल्म सहती उस हत्यारे का? एक नंबर का जालिम है रसूल। नूरी को हर बात पर पीटता था, आखिर कब तक।

0: बर्दाश्त करती बेचारी। एक दिन झगड़ा हुआ और नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ।
0: अच्छा ही हुआ कि नूरी ने उससे तलाक ले लिया। आखिर उसे सुख ही क्या था? रसूल काम से शहर में महीने दो महीने बाहर रहता और वहाँ शहर में कई औरतों से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। अरे वो तो शहर में मौज करता था और नूरी यहाँ इंतजार करती थी। और जब शहर से घर लौटता तो नूरी को पूरे तरीके से पीटता था। नूरी ने बहुत बर्दाश्त किया, जानवरों की तरह पिटती थी बेचारी। अब बताते हुए भी जुबान कांपती है। अल्लाह माफ करे।
2: ठीक ही हुआ। अरे एक औरत अपना जमीर बचाए, ये अच्छी बात है। आखिर मर्दों के जुल्म कब तक सहेगी? उसकी अपनी जिंदगी है, आखिर उसे भी जीने का हक है। और अगर कोई उस पर जुल्म करे तो उसका जवाब औरत को देना ही चाहिए। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। अरे अरे ये तो औरतों की अपनी लड़ाई है और नूरी ने इसकी शुरुआत की है।
1: अजी पर अब पाता तो उसी जालिम रसूल से सारे का निकाह कर रही है ना।
2: अरे लालच में आकर वो सारे की जिंदगी बर्बाद कर देगी।
0: लेकिन सारे की बर्बादी में मुश्ताक का भी हाथ है।
2: वो कैसे?
0: भाईजान ये भी फाता की चाल होगी। फाता चाहती है कि उसका दामाद उसे खूब पैसे दे और मुश्ताक ऐसा नहीं कर पाया। उसने सारे से छुपा कर मुश्ताक से तलाक ले लिया और अब उसकी शादी रसूल जैसे लफंगे से कर रही है ताकि वो उसे खूब पैसा दे।
2: अपनी खुशी के लिए फाता सारे की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी है।
1: फाता इतनी लालची और मतलबी होगी ये हमने सोचा भी नहीं था। वो सारे के साथ ऐसा धोखा करेगी, अगर ये मालूम होता तो मुश्ताक सारे को कभी तलाक नहीं देता।
0: हाँ ये तो धोखा हुआ है, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता भाईजान।
2: अरे भाई हसन भट्ट से रोक सकते हैं।
0: फाता सुनती किसकी है? हसन भट्ट को गुलामों की तरह रखती है, हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती है। और सारे तो तलाक के सदमे से बेहोश ही हो गई थी, अभी तो उबर भी नहीं पाई है बेचारी। ना जाने रसूल से अपने निकाह को कैसे सह पाएगी।
1: औरतों की जिंदगी ही ऐसी हो गई है भाईजान कि उसे दूसरों के किए फैसले पर चलना होता है। ना जाने अल्लाह ने औरतों के नसीब में क्या लिखा है, कहीं नफरत तो कहीं जुल्म सहती रहती है।
2: मायूस मत हो फजी, अल्लाह ताला सब देखता है, सभी के जुल्मों का हिसाब रखता है वो। और देखना एक दिन सारे जुल्मों का बदला लेता है।
1: अजी यकीन नहीं होता, जो ताकतवर है वो तो मजे से जुल्म करता है और शराफत से जिंदगी बसर करने वाला जुल्म सहता है। यही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ना जाने कब बदलेगी ये तस्वीर।
0: अच्छा भाईजान अब मैं चलूंगा, बहुत देर हो गई।
2: अच्छा और सुनो भाई, मिलते जुलते रहना।
0: खुदा हाँ।
1: सुनो हकीम जी के पास चले जाते, जरा दवा ले आते मुश्ताक।
2: ठीक है, अच्छा भी जाता हूँ। सुनो वो पहले कप चाय पिला दो, बस मन जरा भारी हो गया है।
1: हाँ पर हकीम जी के पास जरूर जाना और किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाओ, मुश्ताक की बीमारी अब देखी नहीं जाती।
2: पता करता हूँ। तुम जरा जल्दी से चाय पिला दो बस।
1: हाँ

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे ललित, कोयना, सुप्रिया, सतीश कक्कड़, नीलम, लोकेश और आनंद। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि हेमंत देवलेकर,
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
5: भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए आज से 6 जून तक के लिए पोर्टल शुरू किया है। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपये में स्थायी घरेलू कनेक्शन योजना में दिसंबर 2024 से अब तक 83,936 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। अधिक जानकारी विद्युत वितरण केंद्र या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर प्राप्त की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को हराकर पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी कर ली है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओले की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

से क्यों प्यार, विश्वास और खुशी को एक साथ समेटे हुए महिला सभा के इस अंक में आप सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी आराधना का बड़े ही प्यार व स्नेह के साथ नमस्कार। सखियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ सखियों, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। सखियों, कहते हैं यदि हमारे अंदर हौसला है तो हम विकट से विकट परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि परेशानियों से या कठिनाइयों से लड़ने का हौसला जो है वो हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है। क्योंकि सखियों, यदि हम हौसला रखेंगे और उसे डगमगाने नहीं देंगे ना, तो ना सिर्फ हम उस कार्य में सफल होंगे बल्कि हम मंजिल तक के सफर को आसानी से मेहनत और ईमानदारी के बल पर हासिल कर लेंगे, पा लेंगे, जीत लेंगे। इसलिए सखियों, बढ़िए मंजिल की तरफ और रखिए अपने मन में विश्वास इस प्यारे से गीत के साथ।

सखियो, खूबसूरत गीतों के साथ सूचना, शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा और मनोरंजन, यानी ये सभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से। आकाशवाणी जो कि 1936 से अपनी स्थापना के साथ ही 90 वर्षों से भारत की आवाज बना हुआ है। पता है सखियों, आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में से एक है, जो देश के 99% से अधिक आबादी तक 23 भाषाओं और 179 बोलियों में अपने कार्यक्रम पहुंचा रहा है। साथ ही सखियों, 90 वर्षों से अनवरत अपनी सेवाएं देने वाला आकाशवाणी कभी ट्रांजिस्टर तक ही सीमित था, लेकिन आज ये एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कर रहा है, जिसमें सभी प्रोग्राम आप घर बैठे या विदेश में कहीं भी सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं कार्यक्रमों से। तो सखियों, 90 वर्षों के इस योगदान में सबसे बड़ी भूमिका है आप सभी के साथ की, यानी आप सभी श्रोताओं की। तो फिर सुनते रहिए भारत की आवाज आकाशवाणी। और सखियों, इस जानकारी के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई प्रतिभा किरण योजना के विषय में। सखियों, इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना व आर्थिक

0: सहायता प्रदान करना। सखियों, इस योजना में पात्रता की यदि बात करें तो पात्र छात्रा को शहर की निवासी होना चाहिए, उसे बीपीएल श्रेणी में आना चाहिए, साथ ही कक्षा 12वीं में कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। सखियों, इस योजना से मिलने वाली सहायता में सामान्य स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 5,000 और मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए 7,500 रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सखियों, इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या आवेदन करने के लिए आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल पर जा सकते हैं और पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सखियों, इस जानकारी के बाद अब वक्त है क्रम मेरी उड़ान का, पहचान का, कुछ कर दिखाने का। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान। सखियों, वर्तमान परिवेश पर यदि नजर डालें तो नारी का संघर्ष, उसकी सफलता की कहानी, कहीं उसकी आगे बढ़ने की चाहत पर तो कहीं कुछ महिलाओं की घर परिवार की जरूरतों को मद्देनजर रखकर बनी होती है। यानी आज की नारी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऊंची सोच और लक्ष्य से हर उस मंजिल को छू रही है जो सिर्फ हमारे लिए कभी सपना हुआ करता था। हाँ, इस राह में कई मुश्किलें और मुसीबतें जरूर आती हैं, लेकिन आज की नारी अपने हौसले से हर बाधा को पार कर आगे बढ़ रही है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही एक सफल, सशक्त और कुछ हटकर व्यवसाय को अपनाने वाली सखी अर्पणा जैन से। अर्पणा जी जो एक मेडिकल स्टोर चलाती हैं, तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो अर्पणा जी, स्वागत है आपका हमारे इस क्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो अर्पणा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे और कहां से आपने इस कार्य की शुरुआत की, यानी आपका ये सफर कहां से शुरू हुआ?
1: एक्चुअली में मेरे इस सफर की शुरुआत शादी के बाद और बेटे के जन्म के बाद हुई। मैं हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी जिसमें मेरी एजुकेशन का सदुपयोग हो और साथ ही समाज के लिए मैं कुछ उपयोगी कर सकूँ, ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है अर्पणा जी। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ाई की और कौन सी डिग्री लेना इसके लिए जरूरी होता है?
1: वैसे तो मैंने फिजिक्स में MSc किया है, BEd हूँ और डी फार्मा भी है। देखा जाए तो मेरे पास टीचिंग का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल कैरियर का ऑप्शन था, पर चूंकि मुझे कुछ अलग सा करना था जिसमें मेडिकल स्टोर खोलने का ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना जरूरी होता है और साथ ही फार्मेसी स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन और ड्रग सेलिंग का लाइसेंस भी होना चाहिए।
0: तो अर्पणा जी, जब आपने मेडिकल स्टोर खोलने का जो निर्णय लिया, सभी के बीच में आपने जब अपनी बात रखी, तब आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिला? और सपोर्ट यदि मिल गया तो इस दौरान कौन कौन सी आपके बीच में परेशानियां आई?
1: क्योंकि हमारे देश में मेडिकल स्टोर जनरली देखा है कि पुरुष ही चलाते हैं।
0: हाँ, ये पुरुषों का व्यवसाय है।
1: हाँ जी हाँ, तो पुरुष ही चलाते हैं, तो एक महिला होने के नाते मेडिकल स्टोर खोलना और चलाना एक्चुअल में टफ वर्क है।
0: बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारी महिलाएं करती हैं और लड़कियां करती हैं, लेकिन वो खोलने से थोड़ा हिचकती हैं।
1: तो कि आपको हर तरह के व्यक्ति को उसमें डील करना पड़ता है, तो इन सब में मेरे परिवार स्पेशली पति का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। उनके सपोर्ट के बिना तो ये काम संभव ही नहीं था, क्योंकि एक तो ये बहुत ही जिम्मेदारी और अलर्टनेस का जो है, आज का समय ऐसा है, रोज रिसर्च हो रहा है, तो रोज नित नई तरह की बीमारियों के बारे में हम सुन रहे हैं, तो नित नई दवाइयां आ रही हैं उनके लिए, और उन सबको अवेलेबल कराना, किस जगह किस एरिया में उपलब्ध है, कहाँ नहीं है, उन सबको उपलब्ध कराना, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करना, साथ ही GST के बाद सारा ये बिलिंग का काम, GST, तो ये सब बिजनेस के उतार चढ़ाव, इस सब में मेरे पति ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया।
0: अपना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा अर्पणा जी, ये बताइए कि क्या कभी किसी व्यक्ति या महिला के पास में कोई आपके पास में आई दुकान पर दवाई खरीदने, तो उस टाइम दवाई खरीदने के उसके पास में पैसे नहीं है मान लीजिए, तो उसको जरूरत है, तो ऐसे में आप क्या करती हैं?
1: जनरली तो देखा गया है कि दवा खरीदने वाला आया हुआ व्यक्ति जो आता है वो अब पैसे लिए हुए हो, पर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, तो हम उन्हें या तो दवा में ही अमाउंट कम कर देते हैं, उन्हें छूट दे देते हैं, और यदि बिल्कुल भी ना हो तो जरूरत की दवा उन्हें फ्री में ही दे देते हैं।
0: यानी कमजोर व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो

0: उनको फ्री में भी कई बार दवा दे देते हैं,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो अर्पणा जी। अच्छा ये बताइए कि क्या इस व्यवसाय में, आप जो व्यवसाय कर रही हैं, इसमें उधार भी लिया दिया जाता है, बाद में आप उन पर चुकाने आते हैं लोग?
1: जी जी जैसे ये बिजनेस है, मेडिकल स्टोर का बिजनेस है, इस बिजनेस की एक खासियत है, यहाँ बिजनेस में अन्य तरह के जो बिजनेस होते हैं उनमें आप माल खरीदते हैं और फिर आप बेचते हैं, फिर आपका पैसा वापस आता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन ये इन सभी बिजनेस के अपोजिट होता है। इसमें माल उधार पर आता है और कुछ समय के लिमिट के बाद उसको चुकाना होता है, और लेकिन दवा बिकती नकद में है। तो इसमें चूंकि मेडिसिन के रेट काफी बढ़ते रह रहे हैं, आप अभी समय देख रहे हैं इसमें काफी रेट में इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है व्यक्ति पूरा अमाउंट लिए नहीं होता है तो हमें उधार भी देना होता है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात तो होती है कि व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा कीमती है,
0: ये
1: बड़ी बात
0: सबसे
1: है,
0: बड़ी बात है।
1: तो एक आध मामले को आप यदि छोड़ दें तो उधार लेने वाले व्यक्ति लेकिन समय के साथ कोशिश करते हैं कि वो अपना उधार चुका देते हैं।
0: बिल्कुल अर्पणा जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा कीमती है ना। अंत में आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी?
1: मेरा तो अपनी सभी सहेलियों से, सखियों से यही कहना है कि आज के इस महंगाई के युग में जहाँ कोई काम हमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है और किसी महिला का करियर, यानी कहना चाहिए कि सफल करियर, यदि वो उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है तो साथ ही उनके पीछे आने वाली जो महिलाएं हैं वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगती हैं,
0: बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखती हैं
1: सीखती
0: आगे
1: हैं,
0: बढ़ने के
1: तो
0: लिए।
1: वो जो
0: बिल्कुल
1: है काम करने वाली महिला है वो तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनती है, उसका आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बढ़ती है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन उनके पीछे पूरी एक महिलाओं की लाइन आ रही होती है, सफल वर्किंग वुमेन रोल मॉडल होती है और उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। तो महिलाओं को कहना चाहिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक आर्थिक रूप से कामयाब महिला कई और महिलाओं की प्रेरणा बन जाती है और
0: बिल्कुल
1: उन्हें आगे बढ़ाने में प्रेरणा भी देती है। तो हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे करियर हल्का भी थोड़ा हो, लेकिन हमें उसको सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत, पूरी लगन और निष्ठा से काम करना चाहिए।
0: बिल्कुल, यानी छोटे छोटे स्टेप लेकर आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही
1: निश्चित
0: सफलता आपको मिलेगी और आप उस काम
1: जी
0: में
1: हाँ जी
0: सफल
1: हाँ
0: होंगे। और आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके
1: धन्यवाद।
0: लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सखियों ये तो था क्रम मेरी उड़ान, और अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

और सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब चलते हैं खूबसूरती की ओर। सखियों, खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए मेकअप के छोटे छोटे राज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ढेर सारा मेकअप ही आपको खूबसूरत बनाएगा या फिर दिखाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो चलिए सखियों, आज आपको बताते हैं कि सौंदर्य के छोटे छोटे उपायों से भी आप अपने व्यक्तित्व को बना सकती हैं आकर्षक और खूबसूरत। जैसे कि सखियों, रोज रोज लिपस्टिक से बचने के लिए आप गहरे रंग की लिपस्टिक के बजाय होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक का प्रयोग करें। इससे होंठों पर हल्की चमक व तरावट बनी रहती है और साथ ही हल्का गुलाबी रंग होंठों के कुदरती रंग को भी बरकरार रखता है। होंठों के बाद अब बात यदि आंखों की करें सखियों, तो यदि आप आंखों के मेकअप से कतराती हैं और नहीं करना चाहती हैं, और बेवजह आई शेडो, आई लाइनर या फिर काजल का प्रयोग भी नहीं करना चाहती हैं, तो ऐसे में आंखों को सिर्फ मस्कारे की थोड़ी मोटी परत पलकों पर लगाएं। ये पलकों को इतना आकर्षक बना देती है कि इसके साथ आपको अन्य कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से क्यों, नमी रहित त्वचा से चेहरा बेजान और अस्वस्थ यानी बेरंग बेनूर नजर आता है, इसलिए बेरंग त्वचा को चमकदार बनाने के लिए मॉइस्चराइजर में हल्का शिमर मिलाएं। इससे आपकी त्वचा जो है वो दमकती नजर आएगी। तो सखियों, ये तो थे मेकअप के छोटे छोटे से राज, जिनको आजमा कर देखें आप भी मेकअप करते समय। और अब कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं इस गीत के साथ।

गीत के बाद अब सिक्यो चलते हैं अपनी रसोई में। सिक्यो, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम फलों के राजा आम का चल रहा है, आम जो कि बाजार में कई सारी वैरायटियों में इस समय उपलब्ध है, तो चलिए आज रसीले आमों से ही बनाते हैं अपनी रसोई में एक बहुत ही आसान और यम्मी टेस्ट वाला ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड। सिक्यो, दो लोगों के लिए मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए आपको चाहिए सामग्री: ताजा दही 500 ग्राम, आम 2 नग, पिसी हुई चीनी स्वादानुसार, साथ ही चाहिए आपको इलायची पाउडर, बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन, केसर और थोड़ा सा गुलाब जल। और अब इसे बनाते कैसे हैं, तो नोट कीजिए सखियों इसे बनाने की विधि। सखियों, सबसे पहले दही को मलमल के कपड़े में डालकर 3 घंटे के लिए टांग दें, ताकि उसका जो पानी है वो सारा पानी निकल जाए। अब एक आम का पल्प बना लें और दूसरे को बारीक टुकड़ों में काट लें। अब एक आम का पल्प बना लें और दूसरे को बारीक टुकड़ों में काट लें। इसके बाद अब एक बड़े बाउल में विस्कर की मदद से दही को अच्छी तरह से फेंट लें, जब तक कि वह एकदम क्रीमी ना हो जाए। फिर उसमें पिसी हुई चीनी और आम का पल्प डालकर 5 मिनट तक और फेंटें। अब इसमें कटे हुए आम, इलायची पाउडर, बादाम और पिस्ता की कतरन और साथ ही भीगी हुई केसर और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। और अब तैयार श्रीखंड को 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने दें। तो लीजिए, तैयार है सर्व करने के लिए स्वादिष्ट ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड। और अब सखियों आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत के साथ ठंडे ठंडे मैंगो श्रीखंड का।

करते हैं अज्ञात विज्ञापनों से रहें सावधान। यानी सखियों, उन लुभावने, झूठे या बिना पहचान वाले विज्ञापनों से सतर्क रहें जो हम उपभोक्ताओं को ठगने या गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में सखियों, धोखाधड़ी से बचने के लिए विज्ञापनों की सत्यता को परखना बेहद जरूरी है। यानी कुछ सावधानियां बरतना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि अतिशयोक्ति से बचें, यानी अगर कोई विज्ञापन बहुत ही शानदार लग रहा है तो उस पर आसानी से विश्वास बिल्कुल भी न करें, बल्कि किसी भी सामान को सखियों खरीदने से पहले कंपनी के आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि कर लें। साथ ही सखियों, उस विज्ञापन से संबंधित निष्पक्ष रिव्यूज और रेटिंग्स की भी जाँच करें। वहीं लुभावने विज्ञापनों के पॉपअप पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी कभी भी दर्ज न करें। लेकिन हाँ सखियों, भारत सरकार के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर विज्ञापनों से संबंधित नियमों और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के तरीकों के बारे में जागरूक अवश्य रहें। तो सखियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी अज्ञात विज्ञापनों से सावधान रहने की। और अब सखियों, हमारे मिलने का समय बस यहीं तक। चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस खूबसूरत कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। और अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति आराधना जैन को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है जिसमें आप सुनेंगे नारायण सिंह सिसोदिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।
3: ओ सैया मारी।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे परीक्षित पर निर्कर के गाए गीत।

परीक्षित पनेरकर के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: मेहनत का कोई तोड़ नहीं,
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2 बजे है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में दादा फिल्म से, महेंद्र दहलवी का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुमन कल्याणपुर का ही गाया हुआ फरीब फिल्म का ये गीत। असद भोपाली के लिखे गीत की धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए लगभग 3,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पंजीयन समेत अन्य शुल्क भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय बसों पर मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश भर में कुल 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: बालाघाट जिले के ग्राम नांदी की महिला किसान प्रभावती हरिणखेड़े तिल की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रही हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तिल की फसल लगाई है। कम पानी में होने वाली इस फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। प्रदेश की शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1,872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारत में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की योगासन टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। 11 सदस्यीय अमेरिकी दल युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में 5 जून तक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन सहित जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौरई में काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी पिछले 1 माह से फरार चल रहा था। झाबुआ में 28 जून को सभी पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षक को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पन्ना जिले में आज तड़के शाहनगर और पवई सहित कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा एक फर्जी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन

0: नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल

0: होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को

0: उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा हमने लिया है क्रांति फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है। संतोष आनंद का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है ग्राम महेश्वाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, वाल्मीकि घाड़े, निनाजी घाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

महबूब की मेहंदी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की बोल है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। इस गीत की फरमाइश भेजी है नेपाल पैलेस सागर से तिनक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये नगमा।

अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। आप सबने पसंद किया है चमत्कार फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने, आनंद बख्शी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

नूरी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को जानिसार अख्तर के लिखे गीत की धुन बनाई है खयाम ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने।

कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश संगीत फिल्म के इस गीत की अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने जिसे आवाज दी है, संतोष आनंद का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, किशोरी बोस, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

0: देश का समग्र विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, रात 8:15 और रात 10:00। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 6:30 सुनिएगा चित्रपट संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेंगे 1 जून 2026 को ग्राम रामसिया जिला रायसेन में आयोजित राष्ट्रव्यापी बचाओ अभियान के उद्घाटन की रेडियो रिपोर्ट। रात 8:00 समाचार सेवा आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। उर्दू प्रोग्राम कहकशां में आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम आवशारे गजल रात 9:30 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे रामदास मुंगरे का ख्याल गायन रागों का गौण मल्हार। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यही

0: में कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खास तौर से विविध भारती से?
1: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी, हम लोग, पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था, तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज़ अभी तक कानों में गूंजती है,
0: समाचार वाचक,
1: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
0: भूले बिसरे गीत,
1: भूले बिसरे गीत
0: आज भी प्रसारित होता है,
1: हाँ, और वो सुनते थे, और भी मजा आता था, बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे, तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब के सब। तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था, वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्न अंग था। और बचपन क्या, आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके, गाने बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है, उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचाता
0: है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है, तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा जाता था। और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री सुनने चलते हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। अब बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए, या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली आपने? बताइए हमें।
1: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना दे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करते थे।
1: जैसी कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का कोई भी मैच हो तो भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम और आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते हैं।
1: जी जी।

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ, और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे नहीं
0: बड़ा
1: लगता
0: गहरा है
1: बहुत गहरा
0: और
1: नाता।
0: आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चल ही जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं कि देहरादून से आपने दिल्ली का सफ़र कैसे तय किया और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज़ है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
0: जी।
1: और हम लोग जब गर्मियाँ होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको, पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था, और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव बहुत
1: बहुत
0: रहा।
1: जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है,
0: नौशिया होता
1: तो
0: है।
1: हम लोग

0: प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
1: क्या बात
0: फिर मसूरी
1: है।
0: पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी। और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है,
1: जी
0: वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है,
1: मशहूर।
0: पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग डगन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर
1: अच्छा।
0: चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर
1: लग नहीं
0: हैं
1: रही कि आप शैतान थी, बहुत
0: हैं
1: सीधी सादी लग रही है
0: बहुत शैतान थे,
1: देखने
0: मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को एक छत से जैसे पेड़ों में,
1: में
0: दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहाँ पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
1: जी।
0: का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चढ़े रहते थे बंदरों की तरह, मतलब
1: ओहो
0: ज़्यादातर, मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे
1: मोबाइल
0: फ़ोन
1: में
0: पे,
1: घुसे
0: मोबाइल
1: रहते
0: पे, या
1: हैं।
0: अपने कमरे में, या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे
1: क्या बात है,
0: हैं, बंदरों की तरह पेड़ों में आम, आजकल के बच्चों
1: जामुन
0: ने
1: खाना।
0: आप लोग को मतलब या तो
1: हाँ।
0: ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं, या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाएं, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम,
1: क्या बात
0: जामुन,
1: है,
0: अमरूद खाए हुए हैं,
1: क्या
0: उसका मजा ही कुछ और था।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकलें तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी। तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना, आपके लिए अपने
0: हाँ,
1: माता पिता को समझाना। तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
0: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के
1: साधन
0: पास
1: है, माध्यम
0: साधन
1: है।
0: भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था, तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस,
1: जी
0: और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी, तो जो मज़ा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था, MSc का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लेबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मज़ा आता था, लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
1: उत्तर प्रदेश था
0: उत्तर
1: बिल्कुल।
0: प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इन टू फिल्म्स, तो मैंने कहा नहीं, हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म्स बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
1: अलग
0: हूँ,
1: ही दुनिया थी
0: हाँ, नहीं
1: बिल्कुल।
0: सोच ही नहीं सकते थे,
1: जी
0: तो खैर मैंने आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का, थ्री पेनी ऑपेरा, इतने में NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि NSD भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में, उस टाइम NSD ही थी, अब तो खैर
1: जी
0: काफ़ी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता में
1: पुणे में
0: है,
1: है और
0: पुणे में
1: पुराना।
0: है, और लखनऊ में भी अब खुल
1: जी
0: गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ।
1: क्या बात
0: उसी
1: है।
0: दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे MS अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली।
1: वाह वाह।
0: तो मैं वीज़ा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से।

0: एनएसटी का भी इंटरव्यू दे।
1: ओहो, किसी को बताया नहीं आपने घर में?
0: नहीं बताया घर में। और जब लेटर आया एनएसडी का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
1: एनएसडी करूँगी,
0: एनएसडी में। तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी उस टाइम, बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है। तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का, बेटी का, भटजी की नौनी बहुत होशियार है। अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही, सबने कह रही भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
1: नौटंकी,
0: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, ये तो भांड कहते थे, भांडगिरी करेगी,
1: जाता था, बिल्कुल।
0: बहुत बुरा। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, वो वहाँ के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना है, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे एनएसडी लेकर गए।
1: क्या बात है।
0: वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया, 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहाँ रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी, 250 की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगा, क्योंकि सबके खिलाफ 250 की स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी, कैसे करी, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने एनएसटी रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपये पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था एक ग्रेड,
1: उसमें बहुत बड़ी रकम थी,
0: बहुत बड़ी रकम उसी में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे मैं, ये मेरा सफर रहा दिल्ली से
1: जी,
0: मतलब
1: देहरादून से दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक
0: जी, गाना।

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और हमारे सामने हमारी विशेष सखी, विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना

सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं ये फिल्म हम आपके हैं कौन। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज़ सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहाँ की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता

0: बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें NSD की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गांव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गांव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है। एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ।
0: जी,
1: तो ये मैं क्या, जब NSD में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले, एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें, और उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: जीवन
1: है। अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई, क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं, और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की, तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गाँव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
0: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है मानी जी। यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफ़ी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक

0: महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी
1: ओ
0: रास्ता है, कभी
1: जी
0: सड़क
1: बिल्कुल
0: सही
1: बिल्कुल।
0: रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो
1: बिल्कुल।
0: चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
1: दुख हुआ होगा
0: दुख
1: फिर
0: हुआ।
1: आपको।
0: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े हैं, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी, पहाड़ में आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए। और श्रोते ज़्यादातर हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं। तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं
1: वो
0: सब
1: खा जाते हैं।
0: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या वो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई। और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है। तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत, ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
1: सच में।
0: अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा, मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें
1: जी
0: मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहाँ नहीं पढ़ते हैं,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूँ, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो
1: जी
0: कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले,
1: जी
0: और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है, और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज़्यादा कठिन है, हमने तो
0: बहुत
1: ये भी
0: कठिन है सारा काम,
1: हाँ
0: लड़कियां और औरतें ही करती है,
1: करती
0: घास
1: हैं।
0: काटने से
1: हाँ
0: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: सब
0: काम।
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में। और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: सलाम तो
0: बिल्कुल,
1: हम आपको भी कर रहे हैं
0: अरे
1: कि आप
0: थैंक यू,
1: कहाँ
0: नहीं
1: से
0: मैं भी पहाड़ी हूँ,
1: आई।
0: पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं,
1: जी।
0: और जितने भी मैं आपको बताऊँ आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
1: क्या बात है सचमुच। तो हम
0: हाँ
1: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे, अभी इस
0: जरूर,
1: प्रोग्राम के बाद 4 बजे, जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में। और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी पुरी रखेंगे, तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी
0: ये मेरे
1: यहाँ।
0: लिए भी बहुत गौरव की बात है, और धन्यवाद, और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
1: जी
0: खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
1: जी
0: एनवायरनमेंट, इसमें सुधार होने का।

0: क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए जरूर, हम टैक्स दे रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन हमारा भी कर्तव्य
1: निजी
0: बनता
1: स्तर
0: है
1: पर
0: निजी स्तर पर कि
1: बिल्कुल।
0: हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम
0: हाँ
1: जामुन के, बस वही हम खा
0: वही
1: रहे
0: हम
1: हैं।
0: खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी, तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम। और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती, और राधा जी, सुलक्षणा, हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी हैं, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी, क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक एक भी

0: होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि
1: जी
0: मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो NSD रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5,
1: जी
0: और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे
1: जी
0: मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो हम मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी, और शाम को जैसे होता था वो ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एक महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते थे,
1: करती क्या
0: कौन
1: हो, काम
0: इमेजिन की आदमी ये औरत रोज
1: क्या
0: सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि
1: जा
0: हम
1: रही है वो
0: कैरेक्टर
1: देखो।
0: आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं NSD से फ्रेश निकली थी, तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो,
1: जी
0: क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी, तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी, ऐसी अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
1: कुछ
0: दिल
1: कुछ
0: वाले
1: होता
0: की,
1: है और
0: दिल
1: दिल वाले
0: हाँ कुछ
1: दुल्हनिया
0: कुछ
1: ले
0: होता है
1: जाएंगे।
0: कि रिफत भी, और दिल वाले दुल्हनिया की भी, रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार, और
1: उमराव
0: आजकल
1: जान में भी आपने काम
0: उमराव
1: किया,
0: जान में भी
1: उसमें भी एक
0: काम किया, और ये एक मेरा जो
1: खास
0: धारावाहिक है, आपने
1: विवाह।
0: सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था, और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी
0: उसमें
1: वो
0: मेरा
1: बहुत मशहूर
0: किरदार
1: हुआ।
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी हो, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर
1: जी
0: वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है,
1: जी और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि
0: मम्मो
1: कला मम्मो
0: मम्मो,
1: कला
0: हाँ
1: फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
0: कोई राज की बात नहीं, ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है,
1: जी
0: शेक्सपियर ने
1: जी
0: भी कहा है कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज,
1: जी रंगमंच है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया
0: है
1: जी।
0: जिंदगी। तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है।
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने या
0: जरूर
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज़्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज़्यादा बड़ी है, वो सब ज़्यादा बड़ी चीज़ है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना,
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी, बताइए कि आज की युवा पीढ़ी, जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आएँ?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है, ये इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आवर्स होते हैं, और ख़ासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: प्रतिभा है,
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए। लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा, या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल, और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों, पुरुषों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूफ करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्ट थी, तो मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
0: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, बताओ हिमानी शिवपुरी?
1: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
0: बिल्कुल, और अपनी शक्ति को तलाशे, और आपकी इस लंबी यात्रा
1: है, और किसी भी चीज़ का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है।
0: जी, अब गाना सुनवाएं एक?
1: ज़रूर।
0: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूज़िकल?
1: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती हैं, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी हैं। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम
0: जी,
1: कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत ख़त्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगी।
1: ज़रूर हम ज़रूर
0: तो
1: आऊँगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियाँ हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूज़िक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूज़िक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा,
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूज़िक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जलोजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
0: जी
1: और जसपाल मुनि जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के।
0: जी
1: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
0: दर्जा
1: वर्चस्व रहा है दिल्ली
0: जी।
1: में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
0: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
0: अच्छा
1: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
0: जी जी
1: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
0: जी जी
1: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूज़िक में और डिवोशनल म्यूज़िक में, और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज़ किया। तो ये इस तरीके का रहा सफ़र
0: ये सफर इस तरह से चलता
1: जी
0: रहा।
1: दिल्ली में।
0: हमारी बातचीत के इस सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं, तो
1: ज़रूर
0: आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
0: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं,
1: जी
0: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं,
1: जी जी जी
0: है ना?
1: जी जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना,
0: जी
1: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है, मेरे
0: क्या बात
1: पिताजी के
0: है,
1: साथ।
0: वाह,
1: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पे रियाज कर रहा हूँ। आप
0: वाह,
1: देख रहे होंगे इस पे ये निशान,
0: जी जी जी जी
1: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
0: हाँ, उंगलियों
1: तो
0: के,
1: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
0: वाह
1: और ये जो थ्रेडिंग है, ये
0: जी,
1: देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
0: अच्छा,
1: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज़ किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहाँ से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ,
0: जी
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
0: क्या बात है,
1: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
0: वेणु
1: और वेणु, क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं,
0: जी,
1: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज़ किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों,
0: जी
1: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
0: वाह
1: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की,
0: जी,
1: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
0: बिल्कुल
1: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
0: सबको मिले
1: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है,
0: बिल्कुल
1: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गुरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने
0: वाह
1: आशीर्वाद दिया मुझे, वो उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया,
0: जी
1: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया,
0: जी
1: एंड नवीन अन्ना जी ने किया, ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं,
0: जी जी
1: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
0: अच्छा
1: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कज़न ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
2: जी जी,
1: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
2: जी जी।
1: और फिर और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफ़ी देवप्रिया जी जो हरी जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
2: वाह,
1: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
2: जी,
1: मेरे भाई ने राग हंसोधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है,
2: वाह वाह वाह,
1: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
2: जी जी जी, क्या बात है।
1: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
2: जी,
1: जो मैं आपको सुनाऊंगा
2: जरूर,
1: उनके बारे में भी बताऊंगा
2: जी।

0: पारस जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर, और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए,
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे, तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की, आने की,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो इस तरह से एक
1: मुंबई
0: तरह
1: आना
0: से
1: हुआ।
0: जसपाल मोनी जी
1: हाँ,
0: की।
1: वो इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं,
0: जी
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता,
0: जी
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ता
1: त्याग
0: है।
1: करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस एज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे,
1: जी
0: लेकिन किन-किन फिल्मों में, जिनका आप जिक्र करना चाहें,
1: जी
0: आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
0: जी
1: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी जी
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
0: ओ माय
1: जैसे
0: गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी जी
0: हैं,
1: जी
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी
1: जी
0: पीसेस हैं।
1: जी
0: जी
1: जी
0: और
1: और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी,
0: जी
1: ऊंचाई,
0: जी राजश्री
1: हाँ
0: प्रोडक्शंस की,
1: जी,
0: अमिताभ बच्चन थे।
1: एक मिली पिक्चर आई थी,
0: जी
1: केदारनाथ, नज़रअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: वाह वाह,
1: मुन्ना भाई MBBS रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी
1: सरबजीत
0: फहरिस्त
1: है, फितूर पिक्चर है,
0: है। जी
1: नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
0: वाह वाह,
1: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान,
0: हाँ दोनों पार्ट,
1: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
0: वाह वाह
1: बहुत सारी पिक्चर हैं
0: जी
1: और भी बहुत
0: बिल्कुल।
1: सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज़ में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है
0: हाँ
1: और कुछ मूवीज़ में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है,
0: जी जी बिल्कुल,
1: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।
0: बिल्कुल

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं,
1: जी
0: तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है,
1: जी
0: तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: इन्जॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा करता हूँ,
0: जी
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज़्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं इन्जॉय करता हूँ।
0: जी जी
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो
0: वहां।
1: हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
0: बिल्कुल
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है।
0: जी
1: क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंटेशन है।
1: एक्सपेरिमेंट है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माई गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी।
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका, और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं।
1: जी
0: और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि
0: जी
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है,
1: जी
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
1: जी पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो
0: हीरो का एक
1: एक
0: बहुत ही शानदार पीस है।
1: वो पीस है।
0: जी
1: और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें वह फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है।
0: वाह
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे।
1: मेटल फ्लूट, ओ हो नहीं ये मेटल फ्लूट है सर,
0: जी बिल्कुल
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह।
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है।
0: जी,
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू फ्लूट से
0: डिफरेंट
1: एकदम
0: है
1: अलग है।
0: बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी
1: मुझे
0: बजाना होता है
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ।
0: जी
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं,
0: जी
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं।
0: जी
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकरेनो है
1: जी जी
0: ये आप देख रहे होंगे, इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में। वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर
0: और ये
1: था।
0: आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू,
1: जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं,
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी जी
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा ही देता
1: जरूर,
0: हूँ।
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है, रहमान
1: हाँ
0: साहब के गाने का है,
1: हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात
1: उसका
0: है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता।
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो
1: अब
0: गया
1: सर,
0: है।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था। इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने। तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का।
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
0: जी,
1: और बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने इन्जॉय किए ज़िंदगी में।
0: क्या बात है।
1: अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो
0: ये
1: एक
0: तो बहुत
1: बात
0: बड़ी सी बांसुरी है।
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है
0: कहाँ से लाए?
1: नॉर्मल, जहाँ से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा,
1: अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज़ फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक, मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज़ किया है 2011 में।
0: जी
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज़ करने में तो और 2 साल लगे थे।
0: जी
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड में सुनाता हूँ आपको।
0: जरूर।

अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज़ फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है।

0: आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाई मी.
1: जी
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है, हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल
0: हर
1: बाकायदा।
0: इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाल ही नहीं बजा सकते, उसमें
1: बिल्कुल
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो ज़रूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल।
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है।

0: पूरा साउंड चेंज हो गया।
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है, अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है।

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह।
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक
0: जो
1: में
0: मैं
1: बहुत सुनाई दे रही है
0: बहुत बहुत
1: बांसुरी।
0: बजाया मैंने इसको
1: जी
0: फिल्म म्यूजिक
1: जी
0: में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया,
1: जी
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था।

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है,
1: बिल्कुल।
0: वो पता होना ज़रूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूज़िक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: आइए।
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना,
0: जी।
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए।
0: जी
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे,
0: बिल्कुल
1: उसका
0: बिल्कुल,
1: बेसिक पता होगा आपको।
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी।
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख
1: तो
0: लेंगे।
1: रख लेंगे, बजाएंगे। पर
0: वाह।
1: अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको। अगर इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है,
0: जी
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है, गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान
1: सारे
0: मिलेगी
1: गामा पादा निसा, आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज़, एक दो उदाहरण देता हूँ।
0: जी
1: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है,
0: जी जी
1: अब सारे गामा तोड़ी ऐसे भी बजता है तोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।

0: ये भी सारे काम है,
1: जज्बात आ
0: पर
1: गए
0: इसमें
1: इसमें।
0: प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी,
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है, वो
1: जी
0: नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज़्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए।
1: जी
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी
0: जी
1: खत्म होती ही नहीं है।
0: जी
1: तो इस महफिल को यहां रोकते हुए,
0: आपका आपका और इस जगह का जादू ऐसा
1: अच्छा
0: है कि
1: जी,
0: मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है,
1: मैं समझ सकता
0: आपका भी
1: हूं
0: कार्यक्रम है आगे
1: जी।
0: और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज
1: जी
0: होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने
0: नहीं
1: देंगे आप।
0: जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो
1: और एक गाने
0: मैं
1: की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई
0: ये
1: है।
0: तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश आ
0: हाँ
1: गई।
0: हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूं उनको शायद।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात, तो
0: ठीक है,
1: कॉम्प्लीमेंट आया आज।
0: कॉम्प्लीमेंट है ये
1: जी,
0: तो
1: हमारी टीम
0: एस
1: ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निःशब्द कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको, एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा

श्रोताओ नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजना चाहते हैं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। प्रारंभ में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का दृष्टिकोण उपचारात्मक मॉडल से विकसित होकर एक बुनियादी ढांचे में बदल रहा है। इस ढांचे में निवारक, पुनर्वास, उपशामक और वृद्धावस्था देखभाल शामिल है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट द्वारा नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माण सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए राशि स्वीकृत की गई। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की अदालत में पेश किया। 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में सुनेंगे।

जीतेंगे हम ये वादा करिए, कोशिश हमेशा ज़्यादा करिए, किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करिए। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे आकाशवाणी की गौरव यात्रा पर, जो अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। लगभग एक सदी का यह सफ़रनामा बेहद दिलचस्प है। इसके साथ ही चर्चा करेंगे डिजी लॉकर के बारे में, जानेंगे कि कैसे आप कागजात को संभालने की टेंशन को कम कर सकते हैं। साथ ही सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्म संगीत और जानेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए बिना देर किए ट्यून इन करते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

आवाज़ों का एक ऐसा सफ़र जो 9 दशकों से जारी है, हर दिल तक पहुंचने की जिसकी अपनी जिम्मेदारी है। कभी खबर बनकर, कभी गीत बनकर, कभी प्रेरणा की कहानी है। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन जिसकी पहचान आज भी उतनी ही पुरानी है। तरंगों पर सवार होकर जिसने पूरे देश को जोड़ा है, वह और कोई नहीं, हमारी अपनी आकाशवाणी है। साथियों, जून का यह पहला हफ्ता अपने साथ एक खास खुशी लेकर आया है। कुछ ही दिनों बाद यानी 8 जून को हमारी अपनी आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे करने जा रही है। 9 दशक यानी पूरी 90 साल का यह बेमिसाल गौरवशाली सफ़र। साथियों, यह सफ़र सिर्फ समय का नहीं बल्कि लोगों के विश्वास, प्यार और साथ का सफ़र है। एक समय था जब न मोबाइल था, न इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। तब दूर दराज गाँव में बैठे किसी बुजुर्ग से लेकर शहर के नौजवान तक सबकी सुबह इसी एक परिचित आवाज़ से होती थी, यह आकाशवाणी है। और बस इस वाक्य के साथ शुरू हो जाता था खबरों, जानकारियों, गीत संगीत और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का सिलसिला। दोस्तों, आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, यह उन करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं से जुड़ी एक ऐसी संस्था है जिसने 90 वर्षों तक लोगों के जीवन में अपनी खास जगह बनाए रखी है। किसी ने इससे देश दुनिया की खबरें सुनी, किसी ने अपने पसंदीदा गीतों का आनंद लिया, तो किसी ने नई बातें सीखी। कई लोगों के लिए यह मनोरंजन का साधन था, तो कई लोगों के लिए जानकारी और मार्गदर्शन का भरोसेमंद साथी। यही कारण है कि 90 वर्षों का यह सफ़र केवल आकाशवाणी का नहीं है बल्कि उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी है जिन्होंने इसे सुना, सराहा और अपना प्यार दिया। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन आकाशवाणी और श्रोताओं के बीच का यह रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत बना हुआ है। वक्त बदला, तकनीक बदली, लेकिन आकाशवाणी की विश्वसनीयता और इसका आकर्षण आज भी हमारे दिलों में वैसा ही जिंदा है। दोस्तों, यह मंच कभी पुराना नहीं होता बल्कि हर दौर के युवाओं के साथ और भी नया हो जाता है। आज आकाशवाणी न सिर्फ रेडियो सेट पर उपलब्ध है बल्कि न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन, OTT वेव्स और DTH के ऑडियो चैनल पर भी उपलब्ध है। तो आकाशवाणी के इस आने वाले ऐतिहासिक पड़ाव के लिए आप सभी श्रोताओं को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। आपके इसी प्रेम और अटूट भरोसे ने हमारी इस यात्रा को इतना आनंददायक और यादगार बनाया है। इसी सुंदर तालमेल और अपनेपन के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, एक ऐसी सुविधा की जिसने हमारे ज़रूरी दस्तावेजों को संभालने का तरीका काफ़ी आसान बना दिया है। ज़रा सोचिए, अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले हों और अचानक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वह दस्तावेज आपके पास ना हो तो क्या होगा? ऐसी ही परेशानियों को कम करने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है डिजी लॉकर। साथियों, डिजी लॉकर आपके स्मार्टफोन के अंदर रहने वाली एक ऐसी सरकारी डिजिटल तिजोरी है जहां आपके सारे जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी कहीं भी आप उन्हें अपने मोबाइल में देख या साझा कर सकते हैं। अब कई दोस्तों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींचकर फ़ोन की गैलरी या गूगल ड्राइव में भी तो रख सकते हैं, फिर डिजी लॉकर ही क्यों? तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। कई जगह पर अगर आप गैलरी से फ़ोटो दिखाएंगे तो शायद वो मान्य ना हो, जैसे एयरपोर्ट्स पर, लेकिन डिजी लॉकर ऐप से दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स सरकारी स्तर पर मान्य होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स आप खुद अपलोड नहीं करते, बल्कि वो सीधे जारी करने वाली संस्था जैसे आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी या RTO ऑफिस से आपके अकाउंट में डिजिटल रूप से वेरीफाई होकर आते हैं और IT एक्ट के तहत इसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से मुफ्त है, सुरक्षित है और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस अपने आधार कार्ड और लिंक्ड मोबाइल नंबर की मदद से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो अब कागजात को संभालने की इस चिंता से पाइए मुक्ति, क्योंकि डिजिटल दौर की यही है सबसे बेस्ट युक्ति। आशा करती हूँ कि आप आज ही अपने स्मार्टफोन में डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने दस्तावेजों के खोने या खराब होने की चिंता को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। चलिए, ज्ञान और तकनीक की बातें तो हो गई, अब वक्त है थोड़ा सा गुनगुनाने का। आइए, रुक करते हैं आज की शाम के अगले बेहद खूबसूरत नगमे की ओर।

साथियों, अब वक्त हो चला है रोजगार सूचना का। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइन ग्रेजुएट लेवल के तहत 12,256 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ और ऑडिटर जैसे बड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑनलाइन वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आशा है आप इस जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

खुशी और गम हमारी जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर करेगी, बशर्ते आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीज़ों से खुशियों को ढूंढिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आज के दौर में न जीतना ज़रूरी है और ना ही हारना ज़रूरी है, ये खेल ही लाजवाब है, इसे बस खेलना ज़रूरी है। इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला गीत।

मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, बशर्ते आप ज़रा हिम्मत तो करें, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, आप ज़रा कोशिश तो करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं कीर्ति मीना अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों और मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।

0: अभी आप आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

किशोर कुमार आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म परिचय से। अगला गाना कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को सुनिए। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम अपने सुनने वालों को बतलाना चाहेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा 6 बजे। लोक संगीत में लखनलाल रजक कलाकार 6:30 बजे। दीप्ति राय को सुनिएगा सुगम संगीत में 6:45 पर। 7:21 पर कृषि जगत के अंतर्गत डॉक्टर पीएल अंबूलकर से की गई बातचीत का विषय होगा भिंडी की फसल को कीटों से बचाएं। सुर्खियों में 8 बजे फिल्म संगीत 8:15 बजे। स्पॉटलाइट सुनिएगा 9:15 बजे। फोन इन कार्यक्रम 9:30 बजे। प्रस्तुति चमन सालवार की। शास्त्रीय संगीत 10 बजे। मनभावन होगा 10:30 बजे। ये थे आज के आकर्षण। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 होना चाहते हैं। वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना 2026 को स्वीकृति दी. इसके माध्यम से 48.32 लाख निजी संपत्ति धारक वैधानिक अधिकार पाकर मालिक बन जाएंगे. बैठक में प्रदेश के चहुमुखी विकास, जनकल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कुल 21,485 करोड़ की स्वीकृति दी गई. सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं. नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है. वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे. आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं एक साथ काम कर रहे हैं. CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं. आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें.
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं. 6 बजे हैं. प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नहाटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है।

0: श्रृंखला में श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षावनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
1: जी।
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है

0: लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो, अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया ये।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
2: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए।

0: उन्हें साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी, और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी।

0: 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
1: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
1: मेरा
2: अच्छा,
1: बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। सुगम संगीत, गायिका हैं दीप्ति रॉय।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे दीप्ति राय को। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 7 बजना चाहते हैं, वक्त है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके

पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: of contact for healthcare services across the country, and he was addressing the second convocation ceremony of All India Institute of Medical Sciences AIIMS at Bhatinda in Punjab. The government has invited nominations for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2026. This prestigious award is conferred by the President to children who have made exceptional contributions in various fields. The last date for submission is 31st of July. Benchmark domestic equity indices rebounded today and closed around 0.5% higher. The BSE Sensex rose 383 points to close at 74,650. The NSE Nifty gained 101 points to settle at 23,484. In women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and host England will be played at Taunton tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is levelled at 1-1 with India winning the first match at Chelmsford by 38 runs and England registering a 26-run victory in Bristol. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थी युवाओं से की मुलाकात। ओएसएम विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला, जांच समिति भी गठित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 21,485 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी, स्वामित्व योजना और सिली सिलाई यूनिफॉर्म समेत कई बड़े फैसले। और त्रिशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और बेटे समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और अवसर की। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को पंख देने का काम करती है।
1: शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो भी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है।
0: सीबीएसई के मूल्यांकन विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के ठेके में गड़बड़ी की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। ओएसएम वो व्यवस्था है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जाँच करते हैं। इसी सेवा की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सबसे अहम फैसला स्वामित्व योजना को लेकर किया गया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया।
2: जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त, जो रजिस्ट्रिया प्राप्त होनी है, उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे। यह पूरा निःशुल्क रहेगा।

0: और हर व्यक्ति को यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा।
1: इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब सिली सिलाई तैयार यूनिफॉर्म दी जाएगी। कैबिनेट ने बरगी बांध क्रेन हादसे की न्यायिक जांच, हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री करने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सके। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त डॉ. बशीर बद्र के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर बशीर बद्र के नाम पर एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश उर्दू अकादमी 4 जून को भोपाल के रविन्द्र भवन में यादे बशीर बद्र कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें फिल्मकार विशाल भारद्वाज, गायिका रेखा भारद्वाज और शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी समेत कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरे होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अनिनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2,312 करोड़ लेन देन हुए जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये सम्मानित पुरस्कार राष्ट्रपति उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने वीरता, खेल, कला, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक सेवा में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन सिर्फ awards.gov.in पोर्टल के जरिए ही जमा किए जा सकते हैं। बड़वानी पुलिस जनजातीय छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रक्षा सखी अभियान चला रही है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। महज 15 साल की उम्र में आईपीएल में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब एक खास शोध का विषय बनने जा रहे हैं। आईआईएम इंदौर उनकी कम उम्र में मिली सफलता के पीछे के कारणों और उसके प्रभावों पर गहरा अध्ययन करेगा। संस्थान के डायरेक्टर हिमांशु राय के मुताबिक शोध में समझने की कोशिश होगी कि परिवार, कोच और सामाजिक सहयोग किस तरह किसी युवा प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। बैतूल जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बसे ग्राम टिकरिया को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिया है। इस गांव में वाघमारे परिवार पुरातन भरेवा कला से पीतल और बेल मेटल की अनूठी कलाकृतियां बनाता है जिसमें मोर, चिमनी, हाथी, हिरण और भगवान की प्रतिमाएं शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर ने ग्राम लूनाहेड़ा और बूढ़ा में प्राचीन बावड़ियों का निरीक्षण किया जिन्हें जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया है। सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 22 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बारात बस ने उसे टक्कर मार दी थी। आगर मालवा कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त हुए 74 आवेदन

आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बैतूल में 6 जून को जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और नागरिकों में फैल रहे भय को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने विशेष अभियान चलाया है। झाबुआ कलेक्टर ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। शहडोल में क्षय रोग नियंत्रण अभियान के तहत इन दिनों गांव-गांव शहर-शहर टीबी की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। खंडवा में आज आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:21 हुए हैं। अब सुनिए किसान भाइयों का उनका अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया भौजी बिन्ना हरो के सरला बिन्ना की राम राम। देखो भैया हरो, संजा बिरिया हो गई है, जो दिया बत्ती को समय होत है तो काय नहीं आज अपन और सोई पहले भगवान के सुमर लइए, फिर इत्मीनान से बैठ के आप और बियारी करियो, भौजी के हाथ की गरम गरम रोटी खइयो और संगे संगे अपनों बतकाओ सोई होत रहे, मनो पहले प्रभु स्मरण कर लेते हैं, कछु भजन कर लेते हैं।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: किसान भैया रो, पता है एक दिना हम दोपहरिया में सिया भौजी और भैया कहते पहुंचे। मुतके दिना हो गए हते तो हमने सोची मिलायो नौरन से। उनको एक मोड़ा 4-5 साल को सुनी थी कि तबीयत खराब है, तो हमने कही चलो ते पहुंच जाएं और देखाएं तनक।

तो पहुँचे भैया और भौजी अपने मोड़ाक है जौन कछु दिना से तबीयत सोई ठीक नहीं हती, तो लाए बैठी है थे दोनों गोदी में। और उतई एक गुनिया भैया सोई आए थे, बे बैठे रहे अगरबत्ती नरियल कछु पैसा

0: रहे, हमने जो सब देखो और फिर हमने कही कि भैया जा तो बताओ कि जो का हो रहा है। तो भैया तो कछु ने बोले, बल्कि उंगरिया से इशारा करके कहे थे कि बैठ भी कोई इशारा करो कि इतने बैठ जाओ चुप चाप। मनो भैया बेगुनिया महाराज मोड़ा खे झाड़ भी आए हते, मोड़ा की तबीयत खराब, हाथ गोड़े पतरे से, पेट बड़ो सुस्त सो दिख रहा हो, तो न खेले न ढंग से खाए न पिए, कछु पानी यानी कछु नहीं, और गर्मी सोई इतनी पड़ रही हती। हमने जब ओखे देखो तो हम अचरज में पड़ गए। अब कोई ने उनसे कह दई हुए कि तनक झड़वा लो, बस ओई के काजे गुनिया महाराज भैया भौजी ने बुला लो उनके। अब किसान भैया हरो हमारे सामने बे झाड़वे वाले महाराज भैया बोले कि ए बच्चा के बेजा दिक्कत है, एक बार में ठीक नहीं हुए, दो चार बार झाड़ भी आने पड़े और एक पूजा करने पड़े एक लाने जैमें 2-3 हज़ार को खर्चा आए। हमने उनसे कही कि भैया ऐसो करो कि जब पूजा कराने हुए तो तुम्हें बता दे हैं हम, और अबे तो तुम ऐसो करो कि अपनो जो सामान है ना जितो डेरा तुम लाए हो सब उठाओ और इतने से चले जाओ। तो भैया भौजी कहने लगी बिन्ना जो तुम का कर रही हूँ, ऐसे काय बोल रही हूँ उनसे। हमने कि अब आप हो रहे तो चुप रहो, जो कछु करने हुए हम इनके बाद में बता दे हैं। किसान भैया रो गुनिया खे भगाए के बाद हम तुरते ही भैया और भौजी के से बोले कि जैसे हो वैसे ही तुरते ही चलो अस्पताल, काय कैसे बच्चा की जो तबीयत है ना वह ख़राब है बहुत, और तुमोरन के जो झड़ाई फुकाई सूझ रही है। भैया उते अस्पताल पहुँचे, डॉक्टर भैया ने तुरंत ही सब जाँचें पूरी करी और कही बिन्ना बच्चा तो कुपोषण को शिकार है, हाथ गोड़े पतरे हैं, पेट बड़ो है, थको थको सो सुस्त रहते हुए। भौजी ने कही हाँ हाँ डॉक्टर भैया ऐसे ही बिल्कुल सच्ची कह रहे हो, तुरंत ही मोड़ा को इलाज शुरू कर दो, सही समय पर ले आए थे तो दो चार दिन आब उको भर्ती करवे उते पे रखो हुए। और तब कहूँ भैया भौजी के समझ में आई कि बिन्ना तुमने आती तो मोड़ा की तबीयत तो ख़राब हो जा रही होती, हमारे तो झड़ैया की बातों में आ गए थे, तब उन्हें समझ में आई। तो किसान भैया हरो तब हमने एक दिन फिर सब गांव वालों के बुलाओ, उनके समझाओ कि को पोषित बच्चा अपन काय हो जाते जब तुम्हारे उनके पता है, तो वे कहते नहीं हमें नहीं पता, तो हमने कही ऐसे हो जाते काय कैसे ओके शरीर खे पर्याप्त तो पोषण नहीं मिले, और जब पर्याप्त पोषण नहीं मिले तो वह कुपोषित जो जो बीमारी है वह बढ़ जाते, और जब बीमारी में शरीर और मन की परेशानी होते जैसे शरीर जो है ठीक से काम नहीं करे, वजन सोई दिनों दिन कम हो जाते, बच्चा चिड़चिड़ो हो जाते, रोत रहे थे, ओके कछु अच्छु नहीं लगे, न खेल वे जाए न कछु खाए पिए, ओको पेट बड़ो हो जाते, पेट बाहर निकल आते और थको थको सो महसूस करते, उमे तनक सी भी ऊर्जा नहीं रहता कि खेल कछु अपने मोड़ा मोड़न के साथ में, तो कछु नहीं रह जाए ऊर्जा, मानसिक विकास सोई धीमो हो जाते। तो ये सब लक्षण होते अगर कुपोषित बच्चा रहे थे तो। तब भौजी बोली हाँ बिन्ना जी सब लक्षण तो हमारे मोड़ा में मुद के दिना से दिखा था थे, मगर मनो हमें का जानकारी, बहुत ही नर्रत है तू और हम कच्चू काम नहीं कर पाते थे, तुम सोई इतने दिना में आई, पहले आ जाती तो आज इतनी तबीयत नहीं खराब होती मोड़ा की। हमने कि भौजी मनो जा मनाओ कि ही हम सही समय पर पहुँच गए थे। सबने कही नहीं तो तुम तो झड़ाई फुकाई में लगी हती हैं, सबने कही सच्ची बात है, सही समय पर बिन्ना पहुँच गई तो सही इलाज मिल गो मोड़ा के, अब कोनो चिंता की बात नहीं है। मनो भैया हमने कही अब कनों कोनो चिंता की बात नहीं है। मनो राजू भैया कहने लगे कि बिन्ना चिंता काय नहीं है, हमने कि काय अब तो मैं का हो गऊ, तो वे कहने लगे कि दूसरी खेती किसानी की चिंता तो हम और अनखे बनी रहते हैं, अब खेती को काम करते हैं तो देखो ना आप खेत में भिंडी की फसल लई है, मनो डर बनो रहे थे कि कीट न लग जाए, अब तो मैं तो पता है कि पर की दफ़ा कितने परेशान हो गए थे हमारे। हमने कि भैया चिंता काय कर रहे हो, तुम्हारी समस्या को हल अभी मिलो जा रहे हो। तो भैया बोले राजू भैया कि कैसे मिल जाए बिन्ना, हमें तो कछु समझ में नहीं। हमने कि बिल्कुल न करो चिंता, जे लोग अपने मोबाइल पे रेडियो लगा देते हैं और रेडियो पे अभी जानकारी आवे वाली है, बिल्कुल ध्यान से सभी कोई सुन लियो और जानकारी जई दे हैं भिंडी की फसलों के कीटों से कैसे अपन और बचाएं, तो जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर PL अम्बुलकर भैया और इनसे बतकाव करो है अपने विपिन भैया ने, तो मिलकर सुन लिए थे।
1: किसान भाइयों बहनों राम राम। जो अभी आपने गर्मी की भिंडी की फसल ली होगी, इसमें यदि व्याधियां हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आज

0: हमारे पास पूरा समाधान है। और भिंडी की फसल को कीटों से बचाने के लिए डॉक्टर पी एल अंबुलकर जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी से, हमारे बीच में पधारे हुए हैं। अंबुलकर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सब्जी वर्गीय फसलों में भिंडी की बात कर रहे हैं, अभी जो गर्मी की फसल है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कीट लगते हैं, हमारे किसान बहन भाइयों के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। जैसा कि देखा जाता है कि ग्रीष्मकालीन भिंडी जो होती है खासकर सब्जियों में अपना एक विशेष स्थान रखती है रेशे वाली फसलों के रूप में, और हम देखते हैं कि जो भिंडी की खेती है वो तीनों मौसम में की जाती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कीट व्याधियों से अक्सर फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है
0: जी।
1: जिसके कारण फसल की गुणवत्ता पर बहुत ज़्यादा और उपज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है भिंडी में कीटों के द्वारा क्षति करना होता है। विशेषकर हम देखें कि इसमें दो प्रकार के कीट जो है ज़्यादातर इसमें नुकसान करते, पहला जो है रस चूसने वाले कीट
0: जी।
1: और दूसरे कीट जो होते फल और प्ररोह पर जो नुकसान करते, ये दो प्रकार के विशेष कीट इसमें हानि पहुँचाते हैं
0: जी। तो आपने जो दो प्रकार के कीट बताए हैं डॉक्टर साहब, हम एक एक करके उन कीटों को लेते हैं। पहला जो वर्ग आपने बताया था भिंडी में वो है रस चूसने वाले कीट।
1: रस चूसने वाले कीटों में विशेषकर जो तीन कीट प्रमुख कीट है, इसमें फुदका कीट जिसको हम सामान्य भाषा में हॉपर्स भी कहते हैं, ये मच्छर की तरह होता है
0: जी।
1: दूसरा जो कीट है लाल कीड़ा बोलते हैं
0: जी।
1: तीसरा कीट जो होता है रस चूसने वाला सफेद मक्खी है। एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों
0: जी
1: कि जो फुदका कीट होता है खासकर हम देखेंगे इसके जो शिशु और वयस्क जो होते हैं ये दोनों ही हानि पहुंचाते हैं।
0: अच्छा।
1: और खासकर ये पत्तियों का रस चूसते हैं, पत्तियों पीली पड़ना चालू हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि ये किनारे की तरफ से पीली पड़ती है पत्तियां, जिससे कि पत्ती सिकुड़ जाती है और पीछे की तरफ मुड़ती है
0: जी।
1: दूसरा जो लाल कीड़ा भिंडी में लगता है, बहुत आसानी से किसान भाई इसको पहचान सकते हैं आप, बिल्कुल जैसा मैंने बताया लाल कीड़ा वैसे ही वो दिखाई देता है, और पीछे की तरफ आप देखेंगी तीन काले धब्बे आपको ये दिखाई देते। ये कीट जो है वयस्क और जो शिशु होते दोनों ही हानि पहुंचाते, लेकिन जैसा कि फुदका कीट जो होता है एक अलग तरह के से हानि पहुंचाता है। ये कीट जो है ये भी पत्तियों पर रस चूसता है और कोमल तनों पर खासकर नुकसान करता है।
0: अच्छा।
1: इसमें भी पत्तियां पीली पड़ती है, लेकिन जब भिंडी जो है बीज वाली अवस्था में आती है तो ये बीज को क्षतिग्रस्त करते और जब हम इसका बीज का उपयोग करते तो ये बोने योग्य नहीं रह जाते। तीसरा कीट जो देखे हमने सफेद मक्खी, नाम से ही आप इसको पहचान जाएंगे, लेकिन पहचानना और देखने में थोड़ा मुश्किल होता है कि कीट दिखाई नहीं देता है। अक्सर यह कीट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और एक विशेष प्रकार का रोग ये फैलाता है जिसको कि हम पीला मोज़ेक रोग कहते हैं
0: जी।
1: और इसका जो कीट होता है ये एक विषाणु रोग को संवाहक का कार्य करता है और एक प्रकार का ये मधुरस छोड़ता है जिससे फफूंद उत्पन्न होती है और पत्तियों पर काले धब्बे और निशान उत्पन्न हो जाते हैं
0: जी। जी
1: पौधे की जो बढ़वार है उस पर भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है
0: जी। डॉक्टर साहब, ये तीनों ही जो आपने कीट बताए हैं रस चूसने वाले, फुदका, लाल कीड़ा और सफेद मक्खी, तो इनके प्रबंधन के उपाय भी हमारे किसान बहन भाई को बताएं।
1: इसकी रोकथाम के लिए हम बात करते समन्वित कीट प्रबंधन की
0: जी।
1: अक्सर ये देखा जाता है कि एकदम से किसान भाई रासायनिक कीटनाशक की तरफ न जाकर शुरुआत से यदि उपाय करेंगे तो ज्यादा उनके लिए कारगर होता है। सबसे पहले हमने देखा है जो एक प्रकाश प्रपंच होता है
0: जी,
1: जिसको हम लाइट ट्रैप भी होते हैं, आजकल तो सोलर सिस्टम बैटरी सिस्टम से भी चलने वाले प्रकाश प्रपंच आ गए। शाम को 6 बजे जब अंधेरा हो जाता हम स्थापित कर देते खेत में
0: जी।
1: और 10 बजे तक हम इसको मॉनिटरिंग करते हैं और 10 बजे तक ये विशेषकर हम देखें कि हानिकारक कीट ही 10 बजे तक आते। आजकल तो ऑटोमेटिक सोलर सिस्टम लाइट ट्रैप भी आ गए जो कि 6 बजे से 10 बजे तक ही चलते हैं और जिसमें हमको हानिकारक कीट की आराम से पहचान हो जाती। दूसरा, बोने से पहले कभी भी बीजोपचार एक बड़ा पहलू होता है
0: जी।
1: तो बीजोपचार के रूप में इमिडाक्लोपिड जो आप देखेंगे 75 WP मतलब पाउडर फॉर्म में एक दवाई आती है, 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करके हमको बोना चाहिए ताकि ये जो रोग है ये कम हो सके
0: जी। जी
1: खरपतवार भी कीटों को बढ़ावा देते उस पर आश्रित होते, तो खरपतवार और खेतों की सफाई भी बहुत जरूरी है। फसल चक्र खासकर हम देखें कि एक ही फसल को बार बार नहीं लगाना चाहिए, जैसे बालवेसी कुल की फसल है तो मालवेसी कुल की न लगा के दूसरे कुल की फसल को हमको लगाना चाहिए।

0: तो फसलों को बदल बदल कर भी लगाना चाहिए
1: जी।
0: आवश्यकता पड़ने पे हमको रासायनिक कीटनाशक उपयोग करने पड़ते, लेकिन कई बार हम रासायनिक कीटनाशक की तरफ ना जाके जैविक कीटनाशक का हमको प्रारंभ में उपाय करना चाहिए
1: जी।
0: खासकर जब कम मात्रा में नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले हम देखें कि नीम तेल एजाडिरेक्टिन 1500 ppm का नीम तेल का ये आता है, 2.5 liter प्रति हेक्टेयर की दर से 1 hectare के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम करने के लिए
1: जी जी।
0: और नीम तेल की खासियत ये होती है कि आप देखेंगे जो पत्तियों के पीछे अंडे जो कीट देता है वो अक्सर उससे नष्ट होते ताकि उसकी अगली पीढ़ी उसमें नहीं बन पाती
1: जी जी।
0: और इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे खासकर खाद उर्वरक जो होते हैं संतुलित मात्रा में, खासकर हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन वाली खाद है उनका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, तो संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का भी उपयोग करना आवश्यक होता है
1: जी।
0: जो खेत हमारा होता है जिस खेत में हम भिंडी लगाते चारों तरफ जल निकासी की उचित व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि पानी न भरे, पानी भरने से अक्सर फसल का सड़ाव होता है
1: जी।
0: हम देखेंगे ये कीट जो होता है इसके लिए कई ऐसी प्रजाति है जो कि प्रतिरोधी होती है, जैसे कुछ पुरानी किस्में भी है जैसे परवनी क्रांति VRO6 ये ऐसी किस्में हैं जो कि इस कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है, तो इन किस्मों को भी आप किसान भाई लगाकर इस कीटों से बच सकते हैं।
1: मान लीजिए ये सारे तरीकों को अपना कर भी यदि कीट नियंत्रित नहीं हुआ तो क्या हम रासायनिक दवाओं पे जा सकते हैं फिर?
0: बिल्कुल, ये प्रारंभिक उपाय यदि किसान भाई कई बार नहीं कर पाते, बहुत सारे उपाय नहीं कर पाते, लेकिन इसके लिए आपको खेत में किसान भाइयों को समय समय पर आप खेत में जाकर निरीक्षण करें, पौधे को पलटाए, पत्तियों को देखें कि कहीं ज़्यादा मात्रा में पौधे क्षतिग्रस्त तो नहीं, यदि ऐसा महसूस होता है तो किसान भाई रासायनिक कीटनाशक के रूप में खासकर रस चूसने वाले कीटों के लिए इमिडाक्लोपिड रासायनिक दवाई किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। और इमिडाक्लोपिड की जो मात्रा जो है किसान भाई 150 ml बहुत कम मात्रा लगती है, या फिर किसान भाई थायोमेथॉक्सेम्स दानेदार दवाई आती है 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, इसका भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं ताकि ये कीट के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। पानी बहुत आवश्यक होता है किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए, तो 500 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी की मात्रा होनी चाहिए और बराबर बराबर किसान भाई इसके बनाकर प्रति हेक्टेयर कम से कम आपके 30 स्प्रे पंप का छिड़काव लगभग होना चाहिए, 1 acre के लगभग 12 स्प्रे पंप आपके होना चाहिए। और कई किसान भाई तेज धूप में स्प्रे करते तो ऐसा कभी ना करें क्योंकि तेज धूप में कभी भी कीटनाशक का सही से या प्रभाव नहीं मिलता है, तो स्प्रे करने का समय या छिड़काव करने का समय सुबह के समय करें ताकि पत्ती पर जो ओस की बूंदे जमी रहती तो उस पे उचित उस कीटनाशक का उपयोग हो सके।
1: रोड़ो साहब ये तो था रस चूसने वाले कीटों का प्रबंधन, अब बात करेंगे फल छेदक कीट, इनके बारे में जानकारी दें हमें।
0: जी बिल्कुल, प्ररोह एवं फल छेदक, प्ररोह मतलब जो टहनी जो होती है
1: जी
0: भिंडी की, खासकर ये कीट जो है प्रारंभ की अवस्था में इस कीट की जो इल्ली होती है कोमल जो टहनियां होती है उसमें प्रवेश करती है और अंदर जाकर उसमें जो कोमल भाग जो होती है उसको खाती है और इसके खाने से पत्ती अक्सर मुरझा जाती है
1: जी।
0: इसके बाद ये कीट जो उसी तरह आप देखेंगे कि ये फल में भी नुकसान करता है, कई बार ऊपर का टहनी का हिस्सा एकदम झुक जाता है, जैसे हम गर्दन एकदम नीचे झुक जाती है उस तरह से मुड़ जाता है, मुरझाकर लटक जाता है अक्सर फल वाली अवस्था में, यदि ये क्षति करता है तो फल अक्सर आप देखना मुड़ जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब इसका भी हमें समन्वित कीट प्रबंधन करना होगा, तो क्या मार्गदर्शन है आपका?
0: अभी बहुत अच्छा समय है किसान भाइयों के लिए, अक्सर खेत खाली रहते तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किसान भाई अवश्य करें ताकि उसमें कीट व्याधियों के अवशेष जो है ऊपर की तरफ आके नष्ट हो जाए। दूसरा, जैसे मैंने प्रारंभ में ये बताया था, प्रकाश प्रपंच एक अच्छा माध्यम होता है कीटों की निरीक्षण के लिए, किसान भाई इसका भी उपयोग कर सकते। मैंने और आपको बताया था कि एक ही कुल की फसलों को लगातार नहीं लगाना चाहिए, तो मालवेसी कुल में आती भिंडी की फसल और यदि कहीं ऐसे खरपतवार भी है तो उसको भी वहां से नष्ट करना चाहिए
1: जी।
0: इस कीट के द्वारा खासकर टहनियां अक्सर प्रभावित होती है, तो क्षतिग्रस्त टहनियों और फलों को तोड़कर अक्सर गड्ढे में गड़ाकर या फिर नष्ट कर देना चाहिए
1: जी।
0: और प्रारंभिक अवस्था में ही हमको इसका प्रबंधन करना चाहिए, चूंकि यह कीट फल को भी छेद करके नुकसान करता है, तो बिवेरिया बेसियाना एक प्रकार का ये फंगस रोग उत्पन्न करता है जिससे कीट नष्ट होता है। तो बिवेरिया बेसियाना 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। बाद में जब इल्ली जब बड़ी हो जाए और बहुत अधिक क्षतिग्रस्त कर दे, 5% से अधिक नुकसान यदि होने लगे
1: जी,
0: तो फिर रासायनिक दवा में इमामेक्टिन बेंजोएट जो दानेदार रूप में आती है 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी अथवा 15 लीटर पानी में 6 ग्राम दवाई को मिलाकर इसका स्प्रे सुबह के समय करें। स्प्रे करते समय, खासकर छिड़काव करते समय सावधानी यह बरतनी है कि आपको मुंह पे कपड़ा बांध लीजिए, हाथों में दस्ताने पहने और स्प्रे करने के बाद स्प्रे पंप को अच्छे से धोए, नोजल को अच्छे से साफ कर ले और हाथों को बढ़िया से साबुन से धोकर ये सावधानी हमको बरतनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है भिंडी की फसल में जो कीट आएंगे उनको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि किसान भाइयों बहनों के लिए वरदान सिद्ध होगी और उनकी भिंडी की फसल अच्छा उत्पादन देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: किसान भाइयों, अब बतकाओ तनक रुखे अपन ओरे कर हैं। पहले सुंदर लाल विश्वकर्मा भैया अपन के एक उम्दा लोकगीत सुना रहे हैं, तो मिलके सुन लेते हैं।

हाँ तो किसान भैया रो सुंदर लाल विश्वकर्मा भैया की आवाज़ में तो उमदा सो लोकगीत अपन और ने सुनो और अब तक अपनी बतकाओं पे आते हैं। तो देखो भैया रो अपन और खेती किसानी को काम करते हैं, कछु जमीन जायदाद सोई अपने पास होते हैं और ज़रूरत पड़वे पे लोन की सुविधा सोई अपन और लेते रहे थे। मानो भैया अपनी खेती कितनी है, कितनी ज़मीन है और लोन अपन ने बैंक से कितो लो हो, ओकी महीना पे कितनी किस्त अपन के देनी है, कितनी बनी है किस्त, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब अपने पास रहता है कि नहीं रहता है ना, रहते है। ज़मीन जायदाद के कागजात, खेती के कागजात सब रो रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित होते हैं और ओ में तनक सी भी गड़बड़ी नहीं हो पाता है। तो भैया ऐसे ही ज़िंदगी में भाग दौड़ कितो रही आए, कितो परेशानी रही आए, मनो सबको अपनो जीवन प्यारो लगत है, सबके अपने जीवन से मोह होते है और सब रे भैया भौजी जित जी में ना हरें जा सोई चाहते हैं कि उनके जीवन में कोनो शारीरिक परेशानी नहीं आए। उम्दा बुढ़ापे लो हाथ गोड़े चलत रहें, कोनो के भरोसे न रहने पड़े। तो भैया इतो लो बकबकावे को हमा जो ही मतलब है कि शासन जन बच्चा बड़े बूढ़ों सबके लाने उनके हित में काम करत है और यही से शासन ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना चलाई है। देखो भैया रो आयुष्मान भारत मिशन इसे गरीब भैया भौजी हरे हैं ना उनके मुफ्त इलाज मिला थे। मनो अब जौन डिजिटल भारत मिशन के माध्यम से हमारे अपनी सेहत को पूरा रिकॉर्ड सोई अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, जौन से इलाज करावो अब सरल हो जाए है, समय सोई अपने पास बच जे है और एके लाने शासन जई चाहत है कि सबरे भैया भौजी मॉडर्न को जो अगर बीमार हो गए हैं, बीमार हो जाते हैं तो एक डिजिटल हेल्थ को रिकॉर्ड बन जाए, जौन से कहूँ है कि वे कहूँ भी उनके देख सकते हैं और फिर उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी कंप्यूटर पर सुरक्षित रहे। तो देखो भैया जैसे जैसे सब जगह डिजिटलीकरण हो रहा है ना, उतना ही बीमारी सोई बढ़त जा रही हैं। बस यही काजे सितंबर 2021 में भारत डिजिटल मिशन शुरू भाव है और जौन को उद्देश्य जो ही है कि जौन गरीब भैया आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जे है तो उके मुत के फायदा सोई हुए हैं। जैसे किसान भैया रो ये मिशन को लाभ अगर ले हैं तो ये एक लेवे से जौन अपने गरीब भैया हैं भौजी आ रहे हैं उनके अपनी डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना तो मुत किलो पर्चियाँ लेके जाते, कोनो बड़ी बीमारी हो गई तो मुत किलो पर्ची जा लेके जे हैं, रिपोर्ट लेके जे हैं, फाइलें लेके जे हैं, तो जे सब संग ले जावे की जरूरत ना रह जे है। और मरीजों के जब अपन जाते हैं ना अस्पताल तो कितनी लंबी लंबी लाइन में बैठे रहते हैं, देर तक इंतज़ार करते हैं, सब इरे से संजय हो जाते हैं, अपनो नंबर आते तब ही अपन डॉक्टर के डॉक्टर भैया के दिखा पाते हैं, तो उते इंतज़ार करवे कि लाइन में लगे रहवे कि उते देर

तक बैठे रहने की जरूरत ना रह जाए। ऐसे समय बच जाए अपनों, और समय बहुत कीमती है, और मरीजों के कोनो परेशानी ना हुए। अब भैया मरीजों की परेशानी से अच्छू है कि कोनो भैया भौजी कोनो भी सब जितते हैं, सब अपने आए कोनो मरीज ने बने, मरीज बने भी की नौबत कोनो की जिंदगी में नहीं आए, सब भैया भौजी मोड़ा मोड़ी जो हैं वो स्वस्थ रहें सुखी रहें। और यही इच्छा खे लेख है, देखो कितने लो भैया भौजी बिन नहरे, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम महीना में डुबकी लगावे जाती हैं नर्मदा मैया में, मैया रानी उनकी हर डुबकी के संगे उनकी कामना सोई पूरी करें।

और अब किसान भैया हरो चलवे की बिरिया सोई हो गई है, हम सोई जाखे अब घरे जे हैं तो दिया बत्ती कर हैं, और तो अनुमति दियो अपनी सरला बिन्ना खे सभी किसान भैया भौजी जिज्जी हरो के हमारी राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम सुर्खियों में अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण।
1: इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर एंड फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। पार्टिसिपेंट्स आर Shekhar Iyer, political analyst, and SP Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
3: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
4: Namaskar, thank you.
3: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
4: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला। वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी और या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग। मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है, दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
3: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
5: For over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over at last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
3: Yes.
5: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is the, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is you know, looking at direct income support. Right. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know,
6: yes,
5: that is also the big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts.
6: Yes.
5: Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal, vagara, vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming.
6: Right.
5: So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
6: Yes. Mr. Singh, jaisa ki Mr. Ayya ne kaha ki bahut sare steps uthaye gaye hain, alag alag jo stage hoti hai ek agricultural cycle ki, agar hum pehli jo stage hai inputs ki uski baat kare to usme quality inputs affordable rates par muhayya karana, is par jo pramukh karya kiya gaya hai usko agar aap sateek roop mein hame bata sake.
4: Kheti mein input ki lagat ko ghatana और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है. तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा. उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा. तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है. जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था. तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
6: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
4: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया. उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए. दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का. हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही. तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका. नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी. उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा. तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई. सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है. लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी. और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी. तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है. जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है. चौथा था बीज, बेहतर सीड. अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे. उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया. और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियाँ पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं. ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए, और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को कैसे, बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से। वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
6: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
4: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
6: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
4: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी MSP का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपये क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
6: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
5: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
6: Yes.
5: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
6: Yes.
5: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because, you know, the production, there is like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
6: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में. इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फ़ायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं या मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
4: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय. जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो. और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज़ से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है. दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं. जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया. तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है. इसकी ग्रोथ बहुत तेज है. डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं. 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पर पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट. आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है. किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है. और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं. हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं. अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं. एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में. कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है. जरा सोचिए, एक साल में का, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़. और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही.
6: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे.
4: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता. अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं. दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है. आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया. हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे. आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है. और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है. यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है. इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है.
6: Mr. Iyer, coming to you, can you tell us that this government has always had an inclusive approach towards development in any and every sector? So if we talk about the vulnerable section, the small and marginal farmers, of course, you mentioned the PM Kisan Samman Nidhi Yojana. The very word Samman is giving respect to the farmers. Then the Fasal Bima Yojana you talked about, Kisan Mandhan Yojana is giving pension for small and marginal farmers. And nearly about 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the scheduled caste, scheduled tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
5: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. Mm-hmm. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final product. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop, more crop. That is, for every drop that is being, you know, water, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticide, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
6: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishv hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports. $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hain, unka share bhi badhkar 20% ko paar kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hama thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
4: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं,

इतने साल से, हमें लगता है 21 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है। इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर

0: तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी प्रोड्यूसर जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं।
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
0: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ high value crops like coconut, cocoa, cashew, sandalwood in coastal regions and agar trees in northeast and almonds, walnuts and pine nuts in hilly areas. These have been defined as the focus areas. So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward using the strengths of the opportunity?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this, and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you
2: very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and SP Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरोज एंड राधा पौडवाल मनोहर दास को। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3-4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ, जो लड्डू मिला करते थे हम लोगों को स्कूल में, वो हमेशा याद आते हैं
2: जी।
3: हेलो।
2: हाँ जी
3: सर, हमको गाना सुनना है।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर?
2: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके अपने चमन सालवार का नमस्कार।
5: ये चमन हमारा अपना है।
2: यह है आज के कार्यक्रम की पहली कॉल।
5: ये चमन हमारा अपना है।
2: हेलो,
6: नमस्कार।
2: नमस्कार।
6: आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ बंधु।
2: महाराष्ट्र से बाहुबली जी बोल रहे हैं, आप हमारे बड़े नियमित और पुराने श्रोता हैं।
6: भी मेरी उम्र भी
2: जी
6: 84 साल चालू है।
2: अच्छा,
6: मैं तो सभी बातों से रिटायर हो चुका हूँ मगर बचपन से
2: जी जी
6: थोड़ा सा गीतों का लगाव और आकाशवाणी केंद्रों से संपर्क करना ये मेरी हॉबी है।
2: जी
6: वो
2: जी
6: आज तक मुकर रही भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सेवानिवृत्ति तो जिंदगी का एक पड़ाव है ना, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। एक लंबा अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है और गीत संगीत का भी अनुभव है। आज कौन सा गाना याद आ रहा है आपको?
6: मल्लिकाए तरन्नुम सुमन कल्याण जी पूर्व
2: जी, जी
6: आज हमारे बीच नहीं रहे
2: जी।
6: उन्होंने अपने हुनर से सारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया
2: जी। बिल्कुल,
6: अनेक भाषाओं में उन्होंने भक्ति गीत हो, द्वंद गीत हो, समर गीत हो, अनेक भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हुए है और आज भी उसकी यादगार सभी के दिलों में ताजी ताजी है भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अभी 31 तारीख को उन्होंने फानी दुनिया को अलविदा कहा और अपने दौर की वो आखिरी कलाकार थी
6: जी।
2: जी बिल्कुल, कम गाने उन्होंने गाए लेकिन सारे गाने लाजवाब और सुरीले रहे हैं। अब वो गाना बता दें।
6: ठहरिए होश में आलू तो चले जाएगा, मोहब्बत इसको कहते हैं।
2: मोहब्बत इसको कहते हैं, रफी साहब के साथ उन्होंने गाना गाया
6: जी।
2: बहुत ही लाजवाब गाना है और सुन लेते हैं यही गाना।
6: ओके।
4: ठहरिए होश में आ

0: हेलो,
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत।
0: कहते हैं जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। सवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ उमरिया मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता संतोष कुमार राव, आदरणीय श्रीमान चमन सालिवार जी को सप्रेम नमस्कार।
1: संतोष राव जी, बहुत बहुत स्वागत। और सुनाइए, वहाँ का मौसम कैसा है?
0: सर, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और हवाएं चल रही हैं सर इस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मौसम यहाँ जबलपुर में भी है। बड़ा आशिकाना मौसम चल रहा है।
0: बिल्कुल सर, और इस समय गौरी घाट की बात की जाए तो इस समय बहुत ही ज्यादा वहाँ पे लोगों की आवाजाही बनी हुई है और बहुत लोग आते हैं। बहुत ही अच्छा आस्था का केंद्र है गौरी घाट जबलपुर।
1: बिल्कुल, आपने देखा गौरी घाट कभी?
0: बिल्कुल सर, हम लोग आए थे सर, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ का टेम्पल घूम के। और मन बिल्कुल सुकून से झूम जाता है जब माँ नर्मदा के तट पर हम लोग जाते हैं। और वहाँ की जो शैली, लोग मतलब लोक कलाओं का अगर देखा जाए वास्तविकता, तो एक अच्छा उदाहरण वहाँ पर देखने को मिलता है सर हमें।
1: जी, आपके इलाके के बारे में बताइए कुछ।
0: सर मैं तो बताऊं आपसे कि मेरा जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे खास करके बैगा जनजाति के लोग, गोंड समुदाय के लोग रहते हैं, तो इनमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सर इनके साथ रहना मुझे।
1: जी, अब गाने की बात हो जाए, आज के लिए कौन सा गाना सोच के रखा है आपने?
0: जी सर, एक गाने तो बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन जब कॉल लग जाता है तो लगता है कौन से गाने सुने कौन से गाने ना सुने। एक मूवी है सर, मूवी का नाम है पाकीजा, और इसमें बादल छाए हुए हैं।
1: हेलो, चलिए आपसे बात कट गई लेकिन फिल्म का नाम आपने बता दिया है, तो पाकीज़ा फिल्म का एक गाना हम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल के लिए।

0: हेलो।
1: हेलो हेलो, नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार।
1: राकेश, कोटखाई, शिमला। जी
0: शिमला में आप रहते हैं?
1: जी जी
0: जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी ठंडक का एहसास हो रहा है आपसे बात करके।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: अभी शिमला का मौसम कैसा है?
1: अभी लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज शिमला का मौसम साफ है। जी
0: अच्छा,
1: जी जी
0: और सेब की फसल की क्या स्थिति है, अभी है कि नहीं है?
1: और अभी जुलाई तक तैयार हो जाएंगे। जी
0: अच्छा,
1: जी जी
0: आपके भी बाग हैं?
1: जी हमारे भी बाग है। जी
0: अच्छा, तो सेब की
1: जी
0: तो बहुत सारी किस्में होती हैं, सबसे महंगी और कीमती किस्म कौन सी मानते हैं आप लोग?
1: ओ, सबसे महंगी रॉयल को मानते हैं। रॉयल मतलब बिल्कुल मीठा सेब जो लाल होता है,
0: अच्छा
1: ये उसकी उसको मानते हैं।
0: जी,
1: और जो पीला कलर का सेब होता है उसको हम महंगा महंगी जो है फल मानते हैं। जी
0: कहते हैं कि जहाँ पर जिस चीज़ की बहुतायत होती है उसकी उतनी कीमत नहीं रहती है। हम लोगों के लिए
1: जी जी
0: सेब जितना कीमती है शायद आप लोगों के लिए नहीं होता होगा, आप लोग बोर हो जाते होंगे खाते
1: और
0: खाते।
1: हाँ, मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हम तो सेब खाते नहीं, एक सेब भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, वो भी सुबह में, बस कभी मन कर गया तो खा गया, नहीं तो नहीं नहीं खाते, क्योंकि अपने घर में वो चीज होती तो फिर नहीं खा जाता। हाँ, जैसे कि आप लोग सेब के लिए, चलो आपके लिए महंगा, तो आप तो सेब की कदर करते हैं कि चलो इतना महंगा सेब है, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारे लिए जो है आम जो है बड़े महंगे होते हैं, क्योंकि वो हमारे इधर मिलते नहीं है।
0: जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर
1: जी
0: अभी
1: जी
0: आमों की बहार चल रही है।
1: आपकी इधर आमों की बाहर होती तो हम सोचते थे कि अगर हमार को मिल जाए, अगर हमार को मिलते तो है, आम बाजार में मिलते तो उतने शुद्ध नहीं होते, क्योंकि ताजा जो आम होते तो सब कुछ अलग ही रस होता होगा।
0: अब एक
1: जी,
0: बड़ा मीठा सा जायके वाला गाना हो जाए।
1: तो मुझे फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है फांसी।
0: फांसी? जी,
1: जी, और गाने की बोल है, जब आती होगी मेरी याद,
0: जब आती होगी याद, रफ़ी साहब के साथ शायद
1: और
0: सुलक्षणा
1: सुमन
0: पंडित हैं।
1: कल्याणपुर। जी, इसमें लक्षण पंडित हैं। जी,
0: जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश भाई, आपने इतनी दूर से याद किया, कॉल लगाई और गाना ज़रूर सुने।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है इस फोन इन प्रोग्राम में। अपना नाम बता दें।
1: सर, मैं संतोष यादव बोल रहा,
0: संतोष यादव जी। संतोष,
1: इमलिया से सर,
0: अच्छा है,
1: मरिया इमलिया। जी
0: इमलिया में रहते हैं संतोष यादव जी। और
1: सर जी,
0: करते क्या हैं
1: फल की दुकान है हमारी मम्मी
0: जी?
1: की।
0: जी आपसे मुझे याद आ रहा है, पहले भी कभी बात हुई है।
1: हाँ, बहुत बहुत पहले हुई थी सर बात आपसे, तो आप बोले के लेट फोन लगाया करूँ, तो मैं लेट लगाता।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप इस बात का ध्यान रखते हैं, दूसरे श्रोताओं को मौका देते हैं। अभी तो
1: नहीं
0: आम
1: सर
0: की बहार चल रही है, तो आप आम ज़्यादा बेच रहे होंगे।
1: जी सर, अभी आम ही चल रहा है, अभी क्या है ज्यादा वो नहीं। अब आएंगे असली आम तो, अब ये जुलाई में अच्छी।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: अभी कौन कौन
1: दशहरी,
0: सी, हाँ दशहरी थोड़ी सी बारिश के बाद आता है,
1: हाँ जी,
0: और अभी कौन सी किस्में ज़्यादा बिक रही हैं?
1: अभी तो ऐसा ही चल रहा है सर, मीडियम अभी
0: मीडियम।
1: जी।
0: सड़कों पे बादाम वाली किस्म ज़्यादा नज़र आती है।
1: हाँ जी सर,
0: अच्छी बात
1: बहुत
0: है। अब एक मीठा सा गाना हो जाए।
1: जी सर, हमें निकाह फिल्म का गाना सुनना है, दिल की ये आरजू थी।
0: दिल की आरज़ू थी कोई दिलजुबा मिले,
1: हाँ, महन साहब और सलमा जी का है।
0: महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ में गाना है।
1: जी जी सर,
0: बिल्कुल यही गाना हम बजा रहे हैं। इस
1: जी
0: कॉल
1: सर,
0: के लिए
1: थैंक
0: आपको
1: यू सर,
0: बहुत बहुत
1: जी
0: शुक्रिया।

0: हेलो, फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत
1: सर
0: स्वागत।
1: चमन जी, राजेश गद्रे बोल रहा हूँ
0: राजेश गद्रे,
1: जी।
0: और सुनाइए राजेश भाई, क्या हाल है?
1: खुशनुमा मौसम है तो
0: जी जी
1: ये फोन लग गया, और चमन ज्यादा खुशी हो रही है
0: आपकी तो चिट्ठियां भी आती रहती हैं।
1: जी सर। बिल्कुल, मैं आकाशवाणी जबलपुर के बाद निमेश होता
0: जी जी जी जी जी जी और अभी क्या काम चल रहा है?
1: क्या बात करते हैं सर
0: पूजा पाठ कराते हैं।
1: जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: सर
0: और ग्वारीघाट में तो जितने भी पुरोहित हैं, पूजा करने वाले, सबके अपने अपने
1: जी
0: निशान
1: सर
0: होते हैं।
1: जी सर जी
0: कोई तलवार वाले,
1: सर
0: कोई लोटा वाले, कोई झंडा वाले, ऐसे होते ना अच्छा पहले तो ये बताएं,
1: जी सर
0: नर्मदा जी के क्या हाल है? अभी धारा कैसी है, पानी कैसा है,
1: बस सर बढ़िया है, बिल्कुल साफ सुथरा
0: और
1: बढ़िया।
0: घाट की
1: और
0: साफ सफाई के लिए आप लोग क्या करते हैं?
1: बस करते हैं, मतलब उसमें ज्यादा मतलब कसान से दीपदान रात मतलब उसमें करें आप मतलब करके अलग करके निवेदन करते हैं हम श्रद्धालुओं से जी
0: क्योंकि आस्था के नाम पे लोग जितनी गंदगी फैलाते हैं,
1: सर। घाट
0: आपको
1: को
0: नहीं
1: साफ
0: लगता है
1: रखने की
0: कुछ
1: अपील
0: ज्यादा ही
1: करते
0: होता है?
1: हैं।
0: और एक बड़ा कड़वा सच यह है कि जिन देशों में नदियों की पूजा नहीं होती है,
1: जी
0: वहां की
1: सर जी
0: नदियां
1: सर
0: हमारी नदियों की तुलना में बहुत साफ सुथरी हैं,
1: बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर
0: है ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान में
1: बिल्कुल
0: रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। बदलते
0: अब राजेश भाई गाना बता दें,
1: रिश्ते
0: बदलते रिश्ते फिल्म का गाने के बोल बताएं,
1: टाइटल
0: शीर्षक गीत। जी बहुत शुक्रिया इस कॉल के लिए।

0: तो श्रोताओं, यह था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, जिसमें टेलीफोन लाइन की एक ओर थे हम, दूसरी ओर थे आप, और बीच में थे हमारे सहयोगी रोहित कोडापे और नीरज श्रीवास्तव, जिन्होंने आपसे हमारी बातचीत कराई और इस बातचीत के बीच संतुलन को बना के रखा। फिलहाल इस कार्यक्रम से अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो हेलो
2: हेलो,
3: व्हाट इज मोबाइल नंबर?
4: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे चमन सालवार। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। इस समय रात के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन, तबला संगति सुल्तान खां की है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। तबला संगति सुल्तान खान की थी। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मनभावन सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। पहला गाना खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश कुमार अंजलि, संदीप माधुरी, इनके परिवार के सदस्य खरगोन से ध्रुववास, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला गायत्री, मानपुर से विजय वैद्या, रानी नीतू वैद्या, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, विजयनगर जबलपुर से डॉक्टर अपूर्वा तिवारी और इनकी बहुत सारी सखियाँ। आप सुनना चाह रहे हैं लता मंगेशकर मुकेश को, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से।

कुआ मंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र, अरुण चौरसिया, दत्तरेगी से भागवत वर्मा, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवी से गुलाब दास मानीपुरी, लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ साहू, पेपरिया से दुर्गा राम साहू, सनावत से मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़। आप सभी सुनना चाह रहे हैं अब्दुल्ला फिल्म से रफ़ी साहब को।

आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म से सुनिए मनोहर उदास को, शब्दकार है निदा फाजली। सुनना चाह रहे हैं, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा पारस, करिश्मा, इनके परिवार के सदस्य। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमंत, सन्मति पंचोलिया। विश्वविद्यालय रोड सागर से चंद्रेश गौहर और इनकी मित्र मंडली। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका नपुर, ऋषिका रॉबिन। बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल। शेरपुर कला से अवधेश राय, नवनीत, प्रीति राय।

फिल्म साजन से सुनिए अलका याग्निक को, शब्दकार है समीर। सुनना चाह रहे हैं शाजापुर से मनमोहन रजावत, मधुराशी रक्षित, रितिका स्वीटी इनके परिवार के सदस्य, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, मलोट पंजाब से राज शर्मा इनके परिवार के सदस्य, बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार,

सुरेश कुमार सारथी कमलकांत, नागपुर से वैशाली शैलेश गंवाड़कर, श्वेता सुमित, ध्वनि परी, उमरखेड़ से अभिजीत, सरिता एकांश, मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, इनके परिवार के सदस्य।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated

माइक वन ऑन एयर मिल रहा है। माइक नंबर टू। माइक वन टेस्टिंग। माइक वन टेस्टिंग। मैं एक्चुअली ऑन बटन और फेडर दे के आया था। माइक वन टेस्टिंग, ऑन एयर मिल रहा है। माइक टू टेस्टिंग।

0: कंप्यूटर लेफ्ट, कंप्यूटर राइट,
1: यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है?
0: कंसोल टाइम 5 आवर 8 मिनट 46 47 48 सेकंड।